जितनी देर यह जीवन चल रहा है, बंधनों से छुटकारा पालो, और वो संभव होगा तब जब भ्रम मिटेंगे। ब्रह्म तब तक नहीं मिट सकते जब तक कि ज्ञान के उजाले के कारण अज्ञानता का अंधकार नहीं मिट।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, हमारे अगले प्रोग्राम की प्रतीक्षा करें।
1: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
2: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अम्बाला का अपना रेडियो।
3: पेश है कार्यक्रम घर परिवार, एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीप्ति बाला जी, प्रस्तुत करेंगे RJ सेजल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है घर परिवार अंक 4, आरजे सेजल के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है परवरिश और टेक्नोलॉजी। पहले समय में परवरिश और आज के समय के पालन पोषण में काफी अंतर आ चुका है। कहीं ना कहीं इस बदलाव में बदलती या कह लीजिए बढ़ती टेक्नोलॉजी का भी योगदान है, जो अब बड़ों के हाथ से निकलकर बच्चों के हाथ में आ गई है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति बालाजी, जो एक अध्यापिका हैं और पिछले 23 सालों से अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही एक सिंगल मदर भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सेजल, आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले श्रोताओं का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसे हम परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मुताबिक पहले समय की जो परवरिश होती थी और आज के समय में जिस तरीके से बच्चों की परवरिश हो रही है, उसमें आपको क्या अंतर लगता है?
1: पहले समय में ये होता था कि मदर्स जो थी ज़्यादातर होम मेकर्स होती थी और घर पर ही रहती थी, लेकिन आजकल के बदलते हुए दौर में ये देखा गया है कि मदर्स जो है वो ऑफिस जाती हैं, बाहर काम करने जाती हैं, तो उसमें बच्चों को पालन पोषण में काफ़ी परेशानी होती है। पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे हम अभी हमने ये सुना है कि बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, उनको मित्र के जैसे रखना चाहिए, लेकिन पहले टाइम में ये सब नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर जो थी हमारे साथ एक मदर की तरह ही बिहेव करती थी, कभी एक मित्र की तरह हमसे बात नहीं करते थे और हमें डर होता था उनका। कोई भी बात है, कोई गलत बात करने से पहले हमें ये होता था कहीं मम्मी देख ना ले, कहीं पापा देख ना ले, या कह लो कि एक डिस्टेंस होता था, हमें डर होता था। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करती हैं, ये अच्छी भी बात है, ये कि एक गलत बात नहीं है, लेकिन वो इतना फ्रेंडली हो जाती हैं कि बच्चों में जो एक मदर और एक बच्चे का डिस्टेंस होना चाहिए वो भूल जाता है। आप ये सोच लो कि कोई भी बात अगर उन्हें कोई खटकती है तो अब वो एकदम से नेट पे सर्च करती हैं, अगर बच्चा ये कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये कर रहा है तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उनके पास बड़े नहीं होते। आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते
0: जी।
1: तो ये थोड़ा एक तरह से माइनस पॉइंट होता है कि हम नहीं पूछते किसी से यहाँ से, तो मतलब नेट तो नेट ही है, वो क्या आपको दिखाए इसका कुछ पता नहीं है।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुका है कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए हम कहीं ना कहीं इंटरनेट की ओर ही भागते हैं। आज टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप टीचर भी हैं और एक मदर भी हैं, ज़्यादा मुश्किल स्कूल में बच्चों को संभालना होता है या घर में बच्चों को संभालना होता है?
1: देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर पे हो चाहे बाहर हो, बच्चों को तो संभालना मुश्किल होता ही है। लेकिन ये होता है कि आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं मदर्स से भी बात करती हूँ तो मदर्स मतलब यही बोलती हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, 24 घंटे फोन पे लगा रहता है। लेकिन मैंने ये हमेशा उनको बोलती हूँ कि अभी बच्चा छोटा है, जो छोटा बच्चा होता है ना वो इमोशनली अटैचमेंट होती है उसके साथ। हम क्लास में भी ये ऐसे करते हैं कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर तू ये पढ़ेगा तो मैं तेरे को मतलब क्लैपिंग करवाऊंगी क्लास में, ऐसे मोटिवेशन करते रहते हैं बच्चों की। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं ना वो खुद ही फ़ोन पे बिजी रहती हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा मतलब ये रूटीन है, मैं जब भी क्लास में एंटर करती हूँ ना सबसे पहले 5-10 मिनट बच्चों को मोटिवेशनल थोड़ी स्पीच देती हूँ, उनको एथिक्स समझाती हूँ, बेसिक नॉलेज देती हूँ बच्चों को कि अपनी जो मदर है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या कुछ ऐसी गाइडेंस सुबह ही देती हूँ ताकि सारा दिन बच्चों का माइंड जो है ना वो सेट रहता है।
0: जी, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कम उम्र में ही उनको इस कॉन्फिडेंस की, इस मोटिवेशन की बहुत ही कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में।
1: जी
0: आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले टाइम में कंपैरिजन होता था बच्चों को लेके, कि रिलेटिव्स के साथ बच्चे कंपेयर करते थे पेरेंट्स, कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, हमारा बच्चा नहीं अच्छा। लेकिन आज के समय में आप कह लीजिए कि तुलना अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से हटकर अब दुनिया तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारे हाथ में फोन है, हम रील्स देखते हैं, इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, तो देश दुनिया के कई सारे बच्चों का हमें टैलेंट दिखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बच्चों में कमी ढूंढने लग जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि किस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हैं?
1: हम ये अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट पे बच्चों की काबिलियत देख के, दूसरे बच्चों की काबिलियत देख के, उनकी पोस्ट देख के चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सेम वैसे ही ढंग से करे। लेकिन मेरे नज़र में ये चीज़ गलत है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसी ढंग को अपनाते हुए हमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आज के समय में जैसे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट काफी आगे बढ़ चुका है, और ऐसी रील्स जो है स्क्रॉल करते करते हमारे सामने आ ही जाती हैं, और उन्हें नजरअंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी रील्स हर पेरेंट्स की सोशल मीडिया फीड पर ना जाने ही कितनी ही होंगी। तो अब ऐसे में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, यहाँ पे तो ये है कि जो रील्स में हमें दिखाया जाता है, हम उसी पहलू को देखते हैं। क्या आपने उनके घर की व्यवस्था देखी है कि वो घर में बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं,
0: जी
1: क्या बिहेव करते हैं? हमें सिर्फ मीडिया में काफ़ी टाइम की मशक्कत के बाद एक 5-10 मिनट की, या कह लो कुछ सेकंड्स की वीडियो दिखाई जाती है, और उनका एक ब्राइट पार्ट ही बच्चे का दिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनका रहन-सहन कैसा है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखते हुए हमें अपने बच्चों को उन पे नहीं थोपना चाहिए। आप बच्चे की खुद की काबिलियत देखिए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना चाहिए।
0: जी हाँ, बच्चों की उम्र भी बहुत कम होती है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि उनके लिए सब एनवायरनमेंट भी नया है, ये सब चीज़ें भी नई हैं, फ़ोन भी उनके लिए नया है। जो पेरेंट्स हैं वही एक तरीके से बच्चों को हर एक चीज़ से, हर एक पहलू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका पेरेंट्स की ही रहती है इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन बच्चों का मोरल भी डाउन करता है। इसी जगह अगर हम उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही आप बच्चों को काफी समय से पढ़ाती आ रही हैं, तो आपके मुताबिक उन्हें किन एक्टिविटीज के द्वारा अपने साथ जोड़ा जा सकता है?
1: एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं। जैसे मेरे खुद के दो बच्चे हैं,
0: जी
1: तो जब वो छोटे थे ना, मुझे याद है मेरा बड़ा बेटा UKG में था, तब से मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया।
0: जी
1: मैं खुद जॉब करती थी, मैं स्कूल चली जाती थी, तो मैं बच्चे को बोलती थी कि बेटा घर को लॉक ऐसे लगाना है, अच्छे से चेक करना है, ताला खींच के देखना है ताला लग गया है कि नहीं, उनको पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा अरेंज करके सुबह नाश्ते में दे दिया खाने को। वो स्कूल से जल्दी आ जाते थे, मैं लेट आती थी घर, तो मैं खाने के लिए कुछ रख जाती थी कि ये आपने स्कूल से आके ये करना है, यूनिफॉर्म उतारनी है, और उनको काम दे जाती थी करने के लिए कि आपने ये लर्न करके रखना है, मैंने आते ही सुनना है। और मैंने शुरू से ही उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया। जैसे उनकी वार्डरोब जो थी वो अलग कर दी कि बेटा अपने जो क्लोथ्स हैं वो खुद ही रैप करके अलमीरा में रखने हैं, और संडे के संडे मैं खुद बच्चों को बोलती थी अपनी अलमीरा के कपड़े निकालिए, उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। और जब मैंने किचन में काम करती थी, कभी उसको प्याज दे देना छीलने के लिए कि बेटा ये प्याज छीलो, मेरी हेल्प करो, तो बच्चे बड़े खुश होते थे इन चीज़ों के लिए। तो लेकिन मेरे को लगता है कि आजकल की माएँ ये हेल्प नहीं लेती हैं, बच्चों को खुद जो है मोबाइल पकड़ा दे देती कि हैं कि वो मोबाइल लेके अपना बिजी रहेंगे और हम अपना काम कर लेंगे।
0: जी, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा पैम्पर भी किया जाता है, ताकि पेरेंट जो है, अगर वर्किंग वुमेन भी हैं, वो अपना काम ठीक से कर सकें और बच्चे शरारतें ना करें, तो कहीं ना कहीं फ़ोन का आजकल सहारा लिया जा रहा है। और एज एन टीचर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्लासरूम में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है, तो आप किन तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को करने के लिए कहती हैं ताकि वो क्लास में एक तो बिजी रहे और मेंटली भी क्रिएटिव रहे?
1: रीडिंग वगैरह बच्चे करते रहते हैं, कभी लर्निंग होगी, टेस्ट हो गया, ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ये सब करने के बाद जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनको जैसे वर्ड चेन कुछ ऐसी गेम्स खिलाती हूँ कि चलो बेटा, जैसे मैं क्लास में जितने भी बच्चे हैं अ लेटर से जितने हैं वो खड़े हो जाओ और मुझे 5-5 कोई वर्ड्स न्यू बना के अ लेटर से ही सुनाओ, तो ऐसी मैं गेम्स खिलाती रहती हूँ। फिर बच्चों को, मतलब बच्चे घर पे भी बिजी रहें उसके लिए, जैसे मान लो उनकी पेंसिल बॉक्स है, कई बच्चों की बहुत सी अनटाइडी हो जाती है, पेंसिल शॉप करते हैं तो वो ब्लैक सी हो जाती है, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा देखो आप घर में नहाते हो ना, तो आपने क्या करना है, घर जाके अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है, तो उसमें जैसे सॉक्स में साबुन डाल लिया, उनको पूरा ढंग बताती हूँ कि फिर मैं उनको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ये देखो पेंसिल बॉक्स से आपकी अनटाइडी हो गई है, इसको वॉश करो, तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं घर पे बिहेव करती हूँ एज अ मदर, उस तरह से मैं स्कूल में आपकी मम्मा हूँ, तो आप जैसे मैं बोलूंगी वैसे, मैंने कल देखनी है सबकी पेंसिल बॉक्स साफ होनी चाहिए, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं सुबह जब नेक्स्ट डे आते हैं तो मुझे दिखाते हैं, देखो मैम ये मेरी पेंसिल बॉक्स देखो कितनी सुंदर सी लग रही है, मैं भी नहाया था और मेरी पेंसिल बॉक्स भी नहाई थी, और इसी तरह से वाटर बॉटल भी, और पेरेंट्स भी खुश होते हैं जब वो पीटीएम पे आते हैं ना तो मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैम देखो आपने ऐसा बोला था बच्चों को करने के लिए, घर आके हमें बोलते हैं कि मैंने अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है, अपनी बॉटल को भी साफ करना है। क्लास में भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, जैसे डिस्प्ले बोर्ड को हम डेकोरेट करते हैं तो बच्चों की मैं हेल्प लेती हूँ कि बेटा देखो ये जो चार्ट मैं लगा रही हूँ ये ठीक है, ये ऊपर तो नहीं है नीचे तो नहीं है ऐसे, तो स्टेपलर पिन के साथ उनको मतलब सिखाती हूँ कि ये देखो ऐसे स्टेपल करते हैं, इस तरह से आप घर में भी मम्मा की हेल्प किया करो, अरेंज किया करो, चीज़ें ब्यूटीफुल रखा करो, जिस तरह आप अपने घर को ब्यूटीफुल रखते अपनी क्लास को भी ब्यूटीफुल रखें, इस तरह से काफ़ी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं क्लास में और बच्चे बहुत खुश होते हैं
0: जी। कहीं ना कहीं माँ के बाद स्कूल में ही टीचर जो है, दूसरे गुरु जो होते हैं हमारे, वो ही रोल प्ले करते हैं बच्चों को अच्छे से परवरिश देने में, उनके हर एक चीज मॉरल एथिक्स सिखाने में।
1: हाँ जी,
0: तो टीचर्स का भी एक अच्छा रोल रहता है। साथ ही अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट होने की, कि बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और आज का टाइम भी ऐसा ही है कि बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंसी के बारे में सिखाना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सी एज ठीक रहती है कि बच्चों को हम अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू करें, उन्हें नई नई चीजें सिखाना शुरू करें कि वो मेंटली इतने एक्टिव रहते हैं कि ये काम कर सके वो?
1: देखिए ऐसे तो बच्चों की कोई एज नहीं होती
0: जी,
1: आजकल के बच्चे तो कह लो कि जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं
0: जी,
1: हमारे टाइम पे ये था कि हमें कोई चीज समझने में काफी टाइम लग जाता था कि जैसे आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जैसे हाथ जब उनका चलना शुरू हो जाता है तो मोबाइल पे ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे सारा सिस्टम पता है, हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन ये है कि अगर हम इसी चीज का फायदा उठाते हुए बच्चे को शुरू से ही इंडिपेंडेंट कर ली, क्योंकि आजकल मदर्स जो हैं मोस्टली जॉब करती हैं, तो फोन में ना लगाते हुए मदर्स जो हैं बच्चों को उसी लाइन में मोटिवेट करें, जैसे घर में अपने काम में हेल्प लें बच्चों से, या कुछ अच्छा सिखाएं, अच्छा दिखाएं, जैसे कि मान लो कि मैं ये चाहती हूँ कि अपने कल्चर के साथ अपने रिलीजन के साथ भी टच होना चाहिए बच्चों को शुरू से ही, जैसे हम सुबह उठें सबको नमस्ते या जो भी आप बोलते हो वो बोलें, उनसे उनको बताएं कि भगवान जी के बारे में ऐसी चीज़ें बताएं, मतलब उनको ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए शुरू से ही बच्चों को, तो ऐसे होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना तो बच्चे ये देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो हैं हमें ये चीज़ें बताते हैं अच्छी बातें, बच्चे तो बच्चे होते हैं उनको ये भी पता होता है कि ये बात अच्छी है और ये बात मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही, शुरू से ही हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप जैसे देख रहे हो कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम अगर बच्चे को वो शुरू से ही ये आदत डालें तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा ये चीज़
0: जी। कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से भी जो हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, काफ़ी ट्रेडिशंस हैं, काफ़ी रिलीजन हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत देश भी है हमारा, और बच्चों को हर एक कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, खासतौर के अपने कल्चर के बारे में, जिस कल्चर में वह रहते हैं, जो उनकी मदर टंग है, जिस भी प्रकार से आपके घर में ते फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
1: जी जी।
0: साथ ही अभी हम बातें बहुत करेंगे और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। तो आप गीत भी जरूर सुनती होंगी। आपका कोई पसंदीदा गीत हो जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो प्लीज आप गुनगुनाएं जरूर।
1: जब भी मैं कभी मेरे मन पे किसी तरह का भी बोझ होता है या कुछ भी मेरा मन ऐसे विचलित होता है तो मैं हमेशा यही सॉन्ग गुनगुनाती हूँ और क्लास में इवन बच्चों को भी सुनाती हूँ। बहुत अच्छे से बोल है इसके
0: जी।

0: स्वागत है आप सभी का एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब वापस रुक करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है परवरिश और टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कंपैरिजन के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, कि बच्चों को किन एक्टिविटीज के जरिए अपने साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, जहां मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है जैसे बच्चे जब खाना नहीं खाते, ज़्यादा शैतानी करते हैं, उन्हें फ़ोन देकर बिठा दिया जाता है। फ़ोन के बारे में भी अभी हमने काफ़ी बातें की वैसे। और हाँ, बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाना हमारे लिए तो आसान काम है ही, लेकिन यह उनके मन मस्तिष्क पर भी काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। तो इसके बारे में दीप्ति जी, आपका क्या कहना है?
1: जी सेजल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने अपने सराउंडिंग्स में ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि पहले तो बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, तो मदर्स क्या करती हैं, वो उनको बोलती हैं कि बेटा मैं आपको ना अभी फोन पे ना एक वीडियो दिखाती हूँ, आप सिर्फ 5 मिनट्स उसको देखो, और उसी दौरान वो बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। जो बच्चा पहले कह रहा है मुझे भूख नहीं है, तो वो फोन जैसे ही मदर ऑन करती है तो बच्चा खाना शुरू कर देता है, वो बाइट देते जाती हैं, वो खाता जाता है। इस दौरान ये होता है कि बच्चा जिस तरह का प्रोग्राम देख रहा है ना, बच्चे की एक्साइटमेंट वैसी हो जाती है, तो बच्चा क्या करता है कि कभी बार तो बिना चबाए ही उसको भोजन को अंदर निगल लेता है
0: जी।
1: तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये गलत बात है, बच्चे को कभी भी खाना खाते हुए फ़ोन देना ये बहुत गलत बात है, ऐसा मदर्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों की पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बच्चे भोजन चबाते नहीं हैं अच्छे से खाना खाते ही नहीं है। वो एक्साइटमेंट के दौरान, जैसे कोई एक्साइटमेंट सीन आ रहा है तो वो उसके दौरान बच्चे फटाफट चबा लेते हैं या ध्यान ही नहीं देते, और बच्चा क्या खा रहा है बच्चे को वो भी नहीं पता, बच्चे को उसका टेस्ट ही नहीं पता चलता चीज़ का कि हम खा क्या रहे हैं, कौन सी वेजिटेबल खा रहे हैं, और उसको कोई जानकारी नहीं होती। और इस चीज़ के बाद ये है कि एक तो बच्चे की पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, दूसरा उसकी आंखों पे असर पड़ रहा है क्योंकि वो साथ में फ़ोन देख रहा है। इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढे, या मतलब उनको देखना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे जो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी आंखों का भी ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेंसेस उस टाइम पर डेवलप हो रही होती हैं, उनका शरीर फिजिकली तौर पर भी वो डेवलप हो रहे होते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, क्रिएटिविटी लेवल पर हर एक तरह से असर डलता है। क्योंकि जब खाना ही वह अच्छे से नहीं खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं आ पाएगी। तो अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई है कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर हम बच्चों को फोन दिखाकर खाना खिला रहे हैं, तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? हम बच्चों को किस तरीके से खाना भी खिला पाए और वो बच्चे फोन की तरफ भी ना भागे?
1: देखिए, ये तो आपको पता ही है बच्चों को जो है कहानियां बहुत पसंद है
0: जी।
1: मान लो कि आप कोई सब्जी खिला रहे हो बच्चों को, आप उसी सब्जी के रिलेटेड कोई कहानी बना ले, जैसे उनको बोलें कि बेटा ये देखो ये ग्रीन कलर की वेजिटेबल है, ये अगर हम खाएंगे ना हमारे पास बहुत ताकत आएगी। उनको बताइए कि ये पालक की सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, एक तो उनको वेजिटेबल्स का पता चल जाएगा, और उनको आप मतलब इस ढंग से एक बाइट तोड़िए, उनको ऐसे कोई एरोप्लेन बनाइए, ये देखो बेटा ये एरोप्लेन आ रहा है, मुंह खोलो आप, ये एरोप्लेन आपके मुंह में जाएगा, यूं करके ऐसे। मैंने तो मतलब अपने बच्चों को बचपन में भी चीजें अगर खिलाई है ना तो इस ढंग से ही कहानियां बना बना के, और बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग वे से ये चीजें देखते भी और सुनते भी हैं। ये नहीं कि मोबाइल के द्वारा ही बच्चे एंटरटेन होते हैं, बच्चों को अपनी माँ की बताई हुई कहानियां भी बहुत पसंद होती हैं। तो इसी तरह से बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। आप बच्चों को किसी और ढंग से खाना खिलाएंगे, बच्चे वो ढंग सीखेंगे, अगर आप फोन देंगे तो बच्चे फोन वाला ढंग सीख जाएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एज अ मदर बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं
0: जी। अब तो ये जैसे खाने की हमने बात कर ली कि खाना हम बच्चों को कैसे दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अब कुछ बड़े हो चुके हैं, बच्चों को आदत डल जाती है फोन की, अब वो आदत छुड़ाना भी मुश्किल है। तो खाने के बाद खाना हम कहानियों से खिला देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं फोन ही चाहिए। तो उस जिद को कैसे तोड़ें और बच्चों को किस तरीके से वहां से डाइवर्ट किया जाए, कैसे उन्हें वास्तविकता से परिचय दिलाया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो माओं को खुद फोन छोड़ना होगा। ये चीज मैंने एज अ टीचर भी देखी है कि मदर्स खुद फोन में बिजी रहती हैं, बच्चे भी तो वही चीज देखते हैं। अगर बच्चे मान लो स्कूल से घर आ गए हैं तो मदर्स जो हैं कभी पूछती भी नहीं है, बेटा स्कूल में क्या किया, मैम ने क्या करवाया, ये चीजें नहीं पूछेंगे। तो हमें सबसे पहले तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। और आप बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाइए, जैसे बच्चों को मान लो संडे के संडे छुट्टी होती है, आप बच्चों को बोलो बेटा हम ना आपको पार्क में लेके जाएंगे, तो बच्चे क्या होते हैं सोशलाइज भी होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो पार्क में जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व होएं, बच्चों के साथ खुद खेलें। जैसे मेरे बेटे हैं तो जब मेरे को याद है वो छोटे थे ना तो उनको क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था, तो मैं क्या करती थी मैं खुद उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। इवन की काइट फ्लाइंग में मैंने उनकी बहुत मदद की है, मैंने खुद अपने बच्चों को सिखाया है कि काइट कैसे उड़ाते हैं। इससे क्या होता है कि मदर्स और बच्चों का इंटरेक्शन भी बढ़ती है और बच्चे खुद ही अपनी बातें जो है मदर से शेयर करते हैं कि माँ हमारे साथ बच्चा बन रही है, हमारे जैसे ही खेल खेल रही है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस ढंग से।
0: जी कहीं ना कहीं मदर और बच्चे की भी बॉन्डिंग बनती है, और आगे जाकर कभी बच्चा दिक्कत महसूस करता है अपनी जिंदगी में तो उसे आसानी होती है कि अपने पेरेंट्स से वो शेयर कर पाए और उसका सलूशन उन्हें मिल सके, क्योंकि पेरेंट्स को जितना एक्सपीरियंस हो चुका होता है लाइफ का, कहीं ना कहीं बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है।
1: जी
0: अब आप एक टीचर हैं तो आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे जो काफी आपके इश्यू लेकर आते होंगे कि बच्चे जो हैं बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी हैं या बहुत ज्यादा शरारती हैं, कि उन्हें किस तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत क्लेवर हो चुके हैं क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और टीचर्स के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से टैकल करते हैं और क्या आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज को टैकल करें?
1: जी सेजल, ये तो है, बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं आजकल के, उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी क्लास में भी कुछ बहुत नोटी बच्चे हैं, टॉकेटिव भी हैं और ऐसे जैसे बैठे बैठे ही कोई शरारत कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो मैं इन बच्चों को टैकल करने के लिए क्या करती हूँ कि बच्चों को ड्यूटीज देती हूँ
0: जी,
1: कि क्लास में जैसे बेटा आपने जब सुबह आना है लाइट्स ऑन करनी है और डिस्पर्सल टाइम आपकी ड्यूटी है आपने लाइट्स ऑफ करनी है। तो ऐसे शरारती बच्चों को इसी तरह की क्लास की कोई ड्यूटी दे देती हूँ तो बच्चे जो है ना अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मैम ने हमें ड्यूटी दी है तो हमें कुछ स्पेशल होगा, तभी तो हमें ड्यूटी मिली है, ऐसे थोड़ी ना मिली है। कई बार बच्चों को क्लास को मॉनिटर बना देती हूँ कि बेटा आप आज से ना क्लास के मॉनिटर हो, तो मैं कभी भी बाहर जाऊं तो आपने क्लास को कंट्रोल करना है पीछे से। तो ये होता है कि एक तो उनकी शरारतों पे ध्यान नहीं जाता, उनकी शरारतें कम हो जाती हैं और मेरा भी काम हो जाता है। ऐसे बच्चों को ऐसे ही टैकल किया जाता है। ये चीज है कि जो बच्चे जितने शरारती होते हैं ना वो बच्चे पढ़ने में भी उतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये चीज हमेशा मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। यही मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आप भी घर पे बच्चों को कोई ना कोई टास्क दें, कोई काम दें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें जिससे बच्चों को थोड़ा प्राउड फील हो और बच्चों की शरारतें जो है ना वो अपने आप कम हो जाएंगी।
0: साथ ही कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ की पर्सनैलिटी ही एक्सट्रोवर्टेड होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के, शाय पर्सनैलिटी के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उन्हें सोशलाइज करना सिखाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ आज के टाइम पर बाहर निकलना, दुनिया में रहना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो उस हिसाब से बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है?
1: देखिए स्कूल में तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बहुत से टास्क होते हैं
0: जी,
1: जैसे कि सुबह की असेंबली होती है, हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं उसमें, जैसे राइम्स बोलना, कंपेयरिंग करना, छोटे छोटे काफी टास्क होते हैं। जैसे क्लास में ही बच्चों को कोई गेम खिलाई जाती है, और हम पेरेंट्स को भी ये चीज बोलते हैं कि बच्चों को आप घर में मोबाइल के साथ टचिंग नहीं रखें बच्चों की। जैसे छुट्टी होती है, पेरेंट्स को भी संडे सैटरडे वीकेंड पे छुट्टी होती है, कहीं किसी दिन त्यौहार पे छुट्टी होती है, तो हम पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं कि बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाइए, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखिए और बच्चों को थोड़ा सोशलाइज कीजिए, बड़ों से बात करवाइए ताकि बच्चे जो हैं अपने मन के भाव जो हैं वो शेयर करते हैं। ये चीज़ हमने ना रिसेस टाइम में बहुत देखी है कि जो बच्चे क्लास में शाये होते हैं ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई डर होता है, लेकिन वो रिसेस के टाइम बच्चों की लैंग्वेज, उनकी टोन सब चेंज हो जाती है। तो उसी से हमें मतलब थोड़ा एस्टीमेट हो जाता है कि नहीं ये शाई नेचर का नहीं है, इसकी हेसिटेशन इम्प्रूव करने की थोड़ी नीड है। तो एज ए टीचर हम उस पर फिर वर्क करते हैं
0: जी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रिसेस टाइम पे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि आसपास बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों के पास वैसे ही बच्चे एक फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं
1: जी।
0: तो साथ ही अब और बातें भी करेंगे, हॉबीज के बारे में बच्चों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब वक्त है एक और म्यूजिकल ब्रेक का और आपकी मधुर आवाज में एक गीत का
1: जी। एक और सॉन्ग है जो कि मुझे गुनगुनाना बहुत ही अच्छा लगता है, आई थिंक ये सॉन्ग सब लोगों को पसंद होगा। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये रुलाए

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और कार्यक्रम चल रहा है घर परिवार। अभी हम बात कर चुके हैं आज के समय की परवरिश की, मोबाइल के योगदान की, और इससे बचा कैसे जा सकता है। अब वक्त है बात करने का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में और हॉबीज के बारे में। आज के समय में बच्चे मल्टीटास्कर बन रहे हैं और माता पिता भी उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैम, आपका क्या इस पर विचार है?
2: देखिए, हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला जाता था, और हम भी ऐसा ही करते थे, पढ़ाई पे ही ध्यान होता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे तो कोई ध्यान नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से आजकल मीडिया में सारा दिखाया जा रहा है, बच्चे इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे
1: जी।
2: तो ये अच्छी बात है, बच्चों को ऐसा करवाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों को पूछ के, ये नहीं कि पेरेंट्स जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ही बच्चों को कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उसमें ये होगा कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, सिखाने के बावजूद भी बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा। ये अच्छी बात है, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। घर के आसपास जो भी कोई एकेडमी कुछ भी हो, बच्चों को वहाँ पर भेजिए और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनमें पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि आपको भी सहूलियत रहे, आप आसानी से उसको छोड़ने जा सकें, लेने जा सकें।
1: और जैसे आज के टाइम पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू पहले का टाइम जो रहा, और ख़ास तौर पर ये कंपटीशन का प्रेशर कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी बना रहता है कि किस तरीके से अपने बच्चे को इस कंपटीशन में आगे बढ़ाया जा सके
2: जी।
1: तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों पर भी इसका असर पड़ता होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं?
2: मैं यही बात आपको बोलूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए, उनको काम रहना चाहिए
1: जी।
2: मतलब ये नहीं कि अगर कोई दौड़ चल रही है तो उसमें आप चाहें कि आपका बच्चा भी दौड़े, ऐसा करेंगे तो आप खुद प्रेशर में रहेंगे, आप बच्चों को क्या संभालेंगे। इसीलिए आपको प्रेशराइज नहीं होना है, आपको प्रेशर में नहीं रहना है, ठंडे मन से सोचिए, आप बच्चे की पहले रुचि पूछिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ही बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए, और बच्चे को हर मुश्किल में संभालने के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ही तैयार नहीं होंगे, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, उसका सलूशन कैसे निकालेंगे। हाइपर नहीं होना आपको, आपको भी बच्चे के साथ ही जैसा बच्चा चाहे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ढलना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, बच्चे की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है
2: जी,
1: क्योंकि
2: जी।
1: हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है
2: जी।
1: साथ ही पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा हॉबीज क्लासेस, चाहे वो विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो या एग्जाम्स के बाद जो वेकेशन आती हैं, उनमें चाहते हैं कि बच्चे कुछ नई चीजें सीखे। तो एज एन पेरेंट कौन सी वो उम्र बच्चे के लिए ठीक रहती है कि वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ज्वाइन करें, या पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कौन सी एज हमें रखनी चाहिए कि उस एज में बच्चा जो है एक्टिविटी सीख सकता है या नई एक्टिविटी उसके लिए इंट्रोड्यूस करनी चाहिए?
2: जी देखिए, शौक का या हो

0: नहीं होता कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकता है, किस
1: जी
0: चीज़ में अच्छा है। तो आप ऐसी क्या ट्रिक अपनाती हैं बच्चों को समझने के लिए या बच्चों की एक्टिविटीज जानने के लिए कि बच्चा किस एक्टिविटी में रुचि रखता है?
1: जैसे कि हमारे फुल वीक में एक डे ऐसा होता है जब हम स्टोरी टेलिंग कोई कहानी सुनाते हैं
0: जी
1: तो बच्चे बड़े खुश होके वो कहानी सुनते हैं। इसी तरह से मैं भी कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप भी कोई कहानी सुनाओ, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वो करके दिखाओ। तो बच्चे जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बच्चा कहता है मैम मुझे गाना आता है, मैं गाना सुनाऊं, मैं डांस करके दिखाऊं, मुझे एक अच्छी कहानी आती है, मुझे ये चीज़ बनानी आती है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की ये चीज़ बनानी आती है, मैम मुझे ड्राइंग करनी आती है ये। फिर हमें बच्चों से ऐसी टचिंग रखने से बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पीटीएम पे हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है इस चीज़ को बड़े अच्छे से कवर करता है, तो आप
0: जी
1: इसको उस पर पार्टिसिपेट करवाइए। हम काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इस चीज़ में। मैंने ये चीज़ देखी है कि इवन कि बच्चे जब रिसेस में खाना खाते हैं ना लंच ब्रेक में, तो
0: जी
1: मतलब मुझे ये इवन पता होता है कि बच्चे को ये वाली वेजिटेबल जो है ना ये पसंद नहीं है, ये बच्चे को ये वाली वेजिटेबल पसंद है। तो जब हम पीटीएम पे पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो मैं पेरेंट्स से कई बार ये शेयर करती हूँ कि आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो ये चीज़ नहीं अच्छी उसको लगती, उसको ये खाने में ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि मैम आपको कैसे पता है, हमें तो बच्चे कभी ये चीज़ बताते नहीं है। तो मतलब टीचर जो है ना वो मतलब बच्चों के साथ अगर अच्छे से इंटरेक्ट करे तो बच्चे अपनी मन की बात आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स के साथ शेयर करते
0: जी
1: हैं।
0: कहीं ना कहीं आपकी बातों से अगर हम एक कंक्लूजन की कोशिश करें तो यही निकलता है कि बच्चों को जानने की जो चाबी है, उनके रहस्य का जो ताले की चाबी है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही है।
1: जी जी
0: कम्युनिकेशन ही एक ऐसी की है जिससे बच्चों को जाना जा सकता है, बच्चों को समझा जा सकता है, और ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसी वो क्या चीज़ें अपने मन में रखते हैं, किस इंटरेस्ट में रहते हैं, क्या शौक रखते हैं। हम मानते हैं कि क्लास में टीचर्स बोलते हैं कि ज़्यादा बातें नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना भी ज़रूरी है ताकि बच्चों को हम जान सके।
1: जी जी
0: और एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि एज एन टीचर आप बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगी, और देश के विकसित होने में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में टीचर की बहुत एक अहम भूमिका रहती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपका अब तक कितना योगदान रहा?
1: मेरे खुद का 23 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई
0: जी
1: छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं बच्चों को कुछ नई नई बातें सिखाती हूँ। मेरे को अगर घर में भी कोई परेशानी हो या कुछ भी हो तो मैं स्कूल आके सब भूल जाती हूँ कि बच्चों के हंसते हुए चेहरे देख के बच्चों से बातें करके मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई परेशानी थी। ये सोच लो कि 5-6 घंटे मैं तो दूसरी दुनिया में रहती हूँ कि अपनी दुनिया होती है। तो एज अ टीचर भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि टीचर्स अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करके। इवन टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं, तो एक टीचर अगर बच्चे को गाइड करे ना तो आई
0: जी
1: थिंक कि मदर से ज़्यादा वो टीचर की बात सुनते हैं। तो टीचर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ये बिल्डर्स हैं, देश को बनाने वाले टीचर्स ही हैं। तो जिसने भी ये चीज़ कही है ना, तो ये फैक्ट है कि टीचर अगर चाहे तो बच्चों को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना नहीं। अगर पेरेंट्स टीचर को सपोर्ट करें तो हम बच्चे को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, उनकी मन की बात समझ सकते हैं। और मैं मदर्स को, आजकल की मदर्स को यही मैसेज दूंगी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना रोल एक मदर का है ना उतना ही फादर का भी है। ये नहीं कि फादर अगर जॉब करते हैं तो फादर को बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। आप भी बच्चों से पूछिए कि आज स्कूल में बच्चे ने क्या किया, टीचर ने क्या करवाया, बेटा आपने डायरी लिखी है, आपने मैम ने कोई टेस्ट दिया है। दोनों का उतना ही रोल है जितना कि एक टीचर का है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़िए, जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको पाला है, मैं यही चाहती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स भी उतने ही प्यार से उतने ही निकटता से अपने बच्चों के साथ संबंध बनाइए और उनकी मन की बातें समझिए, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे आपसे दूर ना हों।
0: और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा?
1: मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी मिली, मैंने अपने मन की बातें जो

0: है वो शेयर की यहाँ पे आके। और सेजल आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे, कहीं ना कहीं इन्होंने मेरा पुराना वक्त मुझे याद दिला दिया, अपने बच्चों के साथ उनका बचपन याद दिला दिया। और FM 90.0 रेडियो विदस्ता में आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मैं आगे भविष्य में भी ये चाहूंगी कि आप मुझे फिर से बुलाएं और हम इसी तरह से प्यार भरी बातें करें।
1: जी, और अब वक्त है आप सभी को एक गीत के साथ छोड़े चले जाने का, तो आखिर में बच्चों के लिए आप कौन सा गीत चाहेंगी जो आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहें और बच्चों को डेडिकेट करना चाहें?
0: रे मामा रे मामा रे मामा रे मामा रे, ये प्यारा सा गीत आप बच्चों को सुना दीजिए।
1: जी, अब मुझे भी दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो चला है अब मेरे भी जाने का, और आपको छोड़े चले जा रहे हैं इसी मधुर गीत के साथ। अब मुलाकात होगी अगले अंक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान थे श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सुपोरी।

90.0 मेगा हर्ट्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। सुनते रहिए दिल से।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता। हमाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता FM 90.0 MHz पर। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त राहुल अलियान, लेकर आया हूं कहानियों का सिलसिला। आपके लिए जो कहानी लाया हूं, उस कहानी का शीर्षक है परिवार में सहयोग और सम्मान की शक्ति। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी, माता पिता और उनके बच्चे थे। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी, लेकिन सभी एक दूसरे का सम्मान करते और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। गांव के तालाब का पानी सूखने लगा था और गांव के लोग परेशान हो गए थे, क्योंकि यह पानी उनके खेतों के लिए जरूरी था। दादा ने परिवार के सभी सदस्यों को बुलाया और कहा,
1: हम सभी को मिलकर तालाब को फिर से भरने की कोशिश करनी होगी। यदि हम एकजुट होकर काम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी।
0: सबने मिलकर काम शुरू किया। छोटे बच्चे पानी इकट्ठा कर रहे थे, महिलाएं खाना बना रही थी और पुरुष तालाब की मरम्मत कर रहे थे। परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभा रहा था। काम करते हुए दादा ने कहा,
1: यह काम केवल मेहनत से नहीं होगा, हमें एक दूसरे के साथ प्यार और सम्मान से काम करना होगा, तभी हम सफलता पा सकते हैं।
0: बहुत मेहनत के बाद तालाब फिर से भर गया और गांव के खेतों को पानी मिल गया। सभी लोग खुश थे। परिवार के हर सदस्य को समझ में आ गया कि यदि हम एक दूसरे का सम्मान करें और मिलकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार का प्रेम, सम्मान और सहयोग जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और प्यार से ही हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। माता पिता का बलिदान और बच्चों का सम्मान दोनों ही परिवार की नींव होते हैं। यही परिवार के असली मूल्य हैं, जो हमें जीवन में सफलता और खुशी दिलाते हैं।

अगर आपके पास भी कोई मौलिक कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर 7056413010 पर। अगर हमें वो कहानी अच्छी लगी तो मैं उस कहानी को अपनी आवाज देकर श्रोताओं तक पहुंचाऊंगा। मिलता हूँ एक और कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहे, खुशहाल रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने पस...

नमस्कार। FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो इतस्तर, हम सफर जिंदगी का, हम बाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त नरेश शर्मा। और लघु कथाओं की श्रृंखला में आपके लिए लेकर आया हूं एक और लघु कथा जिसका शीर्षक है अपने संस्कार। और दोस्तों, इस लघु कथा के रचनाकार हैं विकास भारतीय। ध्यान से सुनिए, रचना अपने आप में आपको बहुत कुछ कह देगी। किशोर वय उम्र के खासतौर से 16 से 20 साल की जो अवस्था होती है ना, बहुत नाजुक होती है। मन नई उमंग में चंचल हिरनी की तरह कुलांचे मार रहा होता है। इस अवस्था में शायद हार्मोनल चेंज की वजह से पहली बार विपरीत लिंगी आकर्षण पहली बार महसूस होता है। आपके इसी अलड़पने का फायदा उठाकर शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है, इसको आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं। एक दिन की बात है, जब एक काम से मुझे दिल्ली जाना पड़ा तो मैंने तत्काल एक स्लीपर का टिकट लिया और ट्रेन से रवाना हो गया। और मेरे बैठने के ठीक कुछ देर बाद एक लड़की सलवार सूट पहने, गोरी सी, एक बैग हाथ में लिए हुए मेरी सीट के किनारे आकर बैठ गई। और मैं हाथ में लिए हुए एक मैगजीन को पढ़ रहा था। वो लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी और बीच बीच में मुझे भी देख लेती थी। शायद वो सोच रही थी कहीं मैं उसे अपनी सीट से उतार ना दूं। मैंने मैगजीन रखते हुए पूछा, कहाँ जाना है? लड़की ने कहा, दिल्ली। अंकल, आप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, मुझे भी दिल्ली जाना है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी सीट कहाँ है? उसने कहा, मेरे पास तो जनरल टिकट है। मैंने कहा, तो अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी कहीं ना कहीं तुम्हें वो दे दे। लड़की बोली, जी ठीक है, मैं बनवा लूंगी, लेकिन तब तक तो आप मुझे बैठने दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। टीटी आया और स्लीपर का टिकट तो उसने बना दिया, किंतु सीट नहीं दी। बोला, कोई सीट खाली है ही नहीं। मैंने पूछा, आप क्या करती हो? लड़की ने कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा, मेरा मतलब पढ़ाई से है। जी, मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, और आपके घर में और कौन कौन लोग हैं? लड़की ने कहा, मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। थोड़ी देर बाद वो मोबाइल निकाला उसने और उसमें सिम कार्ड लगाया और किसी से बात की। उधर से कौन था, क्या बात हुई, ये तो पता नहीं, लेकिन लड़की ने अपना लोकेशन दे दिया कि फलान स्टेशन पार किया है अभी मैंने। मैंने कहा, पापा से बात कर रही थी तो स्टेशन से रिसीव करने के लिए। लड़की बोली, नहीं नहीं, पापा तो मेरे गांव में हैं। मैंने कहा, फिर भैया रहे होंगे? नहीं नहीं, मेरे वो थे वो। मैंने कहा, वो मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि अभी तुम्हारी शादी हो गई है। लड़की ने कहा, जी नहीं नहीं, अभी अभी शादी तो नहीं हुई, दो तीन दिन में हो जाएगी। मैंने कहा, ओ अब समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो। लड़की जी मुस्कुराने लगी। अच्छा, लड़का क्या करता है? जी दिल्ली में नौकरी करता है और बोल रहा था कि मुझे भी नौकरी लगवा देगा, फिर हम दोनों मौज से रहेंगे। मैंने कहा, काफी स्मार्ट लड़का होगा। लड़की जी, स्मार्ट तो है और बहुत अच्छे स्वभाव का भी है। मेरा माथा ठनका, मैंने अब उसकी कहानी जानने की सोची। इसके लिए उससे घुलना मिलना जरूरी था, तो स्थिति को भांपते हुए मैंने कहा, मैंने भी प्रेम विवाह किया है। लड़की बड़ी उत्सुक से, वो आप भी भागकर शादी की हो? मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं जिस लड़की को पसंद करता था ना, वो लड़की भी मुझे भागकर शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने उसे कहा, नहीं, हम तुमसे प्रेम तो करते हैं,
किंतु इसका मतलब ये तो नहीं कि जो माँ हमें अपने गर्भ में रखे, हमारे लैट्रिन बाथरूम को साफ करे, जो पिता हमें अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाए, बाजार में हमें खेलने के लिए खिलौने खरीद के दें, उनके प्यार को ठुकरा दूं, जो सम्मान बनाने में इतनी उम्र गवाई, उसकी इज्जत मिनटों में रौंद दूं, उनका सर समाज में हमेशा के लिए झुका दूं। मैं शादी तो तुम्ही से करूंगा, लेकिन माँ बाप को मना कर। और फिर एक दिन माता पिता मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मैंने कहा, वैसे आप जिससे प्रेम करती हैं उसे आपके घर वाले जानते हैं? लड़की ने कहा, जी जी जी नहीं, कोई नहीं जानता। मैंने कहा, आपने उसका घर देखा? तो उसके घर वाले आपको जानते होंगे। लड़की ने कहा, नहीं। मैंने कहा, फ्रॉड, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है। लड़की ने, नहीं नहीं, वो ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा, एक बात बताऊं, जो प्यार करता है ना, सिर्फ करता है, जताने की कोशिश नहीं करता, किसी अनुचित टोकता और डांटता भी है, और ये तुम्हारे धन तुम्हारी सुंदरता से ही प्यार करता है। लड़की बोली, नहीं ये गलत बात है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी, पर मेरे पास एक उपाय है, परीक्षा लेना चाहोगी? लड़की ने बोला, क्या? मैंने कहा, उसे फोन करो और बोलो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं मेरी शादी तुमसे करने के लिए, और वो भी आने के लिए कह रहे हैं वहीं दिल्ली में। मेरे मामा मामी भी हैं, वो भी आ जाएंगे, और बोले आखिर एक दिन शादी तो करनी है, अभी तुम्हारी पसंद का है तो वहीं कर देते हैं, ताकि हम लोगों का मान सम्मान भी बना रहे और तुम लोगों की खुशी भी। इसलिए तुम भी अपने मम्मी पापा को बुला लो। लड़की ने वैसा ही किया, फोन लगाया, और लड़का इसकी सब बातें सुनकर आग बबूला हो गया। बोला, तेरे जैसी कितनी लड़कियां आईं और चली गईं, तू मुझे बेवकूफ बनाने आई, पागल समझ रखा है क्या? और डांटते हुए उसने फोन काट दिया। लड़की ने फिर से फोन लगाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। मैंने कहा, अब उसका फोन कभी लगेगा भी नहीं, क्योंकि ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्डों का प्रयोग करते हैं। अब सोचो, घर से भागकर, और भागने का मतलब घर जा नहीं सकती, क्योंकि जब एक बार घर से भाग जाओगी फिर दोबारा घर तो जा नहीं सकती ना, और उनको अपनी परेशानी बता नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा उसके सिवा कोई और है भी नहीं। इसलिए वो तुम्हारे साथ अगर कोई बर्बरता करता तो तुम क्या करती? या फिर एक दिन छोड़कर तुम्हारा इस्तेमाल करके चला जाता, भाग जाता, तो क्या करती? जानती हो ऐसे में लड़कियां क्या करती हैं? ऐसे में लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, और घर वालों को पता तक नहीं चलता। लड़की रोने लगी, अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? मैंने अपने मम्मी पापा को धोखा दिया है, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ओहो रोना नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अब एक काम करो, अपने घर फोन लगाओ और मेरी बात करवाओ। लड़की ने फोन लगाकर मुझे दिया। मैंने कहा, हाँ भाई, मैं फलाना बोल रहा हूं, और उसे अपना परिचय भी दिया और कहा कि अब सब ठीक है। लड़की के पिता लड़की से बात करने को कहते हैं, फोन मैंने लड़की को दिया कि लो बात करो। लड़की ने कहा, हाँ पापा, और इतना कहते ही वो दहाड़ मारकर रोने लग गई। पापा ने पूछा, बेटिया कहाँ हो तुम? हम सभी लोग बिना खाए पिए हुए तुम्हें खोज रहे हैं, जल्दी घर आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जो हुआ उसे भूल दो, बस घर आ जा बेटी। लड़की ने कहा, पापा
बस थोड़ा सा बहक गई थी, पर अब ठीक हूं। ये भैया मिल गए, मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। और मुझे धन्यवाद देते हुए कहती है, आपने मुझे आज बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। मैं उसे कहता हूँ, गलती इंसान से ही होती है। और सुबह का जो भूला वापस शाम को घर आ जाए ना, उसे भूला नहीं कहते। आराम से घर जाओ, सब तुम्हारी बाट जो रहे हैं। लड़की अगले स्टेशन पर उतर कर दूसरी ट्रेन से अपने घर के लिए वापस रवाना हो जाती है। ये संदेश है आज की युवा पीढ़ी को, जिन माँ बाप ने अपने खून से सींचा है ना तुम्हें, जिन्होंने अपने सारे सपने सिर्फ तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए लगा दिए हों, अपने खून को सिर्फ इसलिए लगा दिया हो कि तुम्हें पसीना तक ना आए, उनके संस्कारों को, उनकी इज्जत को इस तरह से किसी के बहकावे में आकर पांव के तले रौंदो मत। अपनी मर्यादाओं में रहो, अपना सम्मान करो, अपने माँ बाप का सम्मान करो। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।

0: ही हैं और हम ही रहेंगे, यानी मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा, ऐसे दो रखे पतवत, मैं कब से चला आ रहा हूं और कब तक चलता रहूंगा, इटर्निटी। शवसर सुन तुम शिव, जिसे वो शिव कहती है, वो कहती है न वो जीता है न वो पैदा होता है न वो मरता है, वो है बस, वो है। रमस्वर नाथगत, जैसे सूर्य आता है और जाता है लेकिन उसका प्रकाश इटर्निटी में है, यानी प्रकाश। ललदेत हमें एक ऐसी मैसेज देना चाहती है, वो ये कहती है कि हम जो इंसान हैं, जो इटर्नल ट्रूथ है, हम उससे वाकिफ ही नहीं, हम उससे बिल्कुल अनजान हैं। और उसका कारण है कि हम लोग जीने मरने पैदा होने के थॉट प्रोसेस में ही एंटैंगल्ड हो गए हैं। हमें लगता है कि पैदा होना और मरने के बीच में जो घटनाएं घटती हैं वही जीवन, और पैदा होने और मरने के बीच में जो होता है वही हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। उसके बीच में नेम, फेम, पावर, पोजीशन, पोजीशन, अमीर गरीब, रुतबा, यही हमें लगता है कि यही हमारी आइडेंटिटी है। और हम इसी आइडेंटिटी को अचीव करने के लिए, इसी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसी आइडेंटिटी को सिक्योर करने के लिए हम पूरा संघर्ष करते हैं और भूल जाते हैं कि हम तो इटर्नल हैं। वो जो इटर्निटी का भाव वो अपने ललवाख में कहती है कि ऐसी ऐसी आसो ऐसी दो रखे पतवत, हम ये भूल जाते हैं और हम उस इम्परमानेंट रिलेशनशिप, इम्परमानेंट बिलीफ, इम्परमानेंट नेम एंड फेम में फंस जाते हैं। और हम जीते हैं और मरते हैं विद दिस इम्परमानेंट बिलीफ। वो कहती है रमस्वर में जो तुम्हारो, मतलब हाँ सब कुछ बदलता है, सूर्य भी बदलता है, उसकी पोजीशन भी बदलती है, वो दिन रात आता है, डिसअपियर हो जाता है, लेकिन वो एक चीज कहती है, सब कुछ बदल रहा है लेकिन जिसके अंदर ये सब कुछ बदल रहा है हमें उसकी पहचान नहीं है। क्योंकि जहां ये सब कुछ बदल रहा है, जिसके अंदर ये सब कुछ बदल रहा है, उसे वो चित्त कहती है, सत कहती है, कॉन्शियसनेस की रेफरेंस में कहा जाता है, वो चित्त बदलता नहीं है, वो चित्त वही ऑब्जर्व कर रहा होता है। लेकिन हम जिस ऑब्जर्वर से इस पूरी घटना को एक्सपीरियंस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो हमें कहती है कि उस विटनेसिंग आई से, उस अनचेंजिंग आई पर जाना, जो चेंजिंग आई है, कभी एक आइडेंटिटी कभी दूसरी आइडेंटिटी, आज अमीर कल गरीब, आज इस पोजीशन पे कल उस पोजीशन पे, वो कहती है इस आई से हमें उस विटनेसिंग आई पे, उस ऑब्जर्वर आई पे जाना है। बड़ी आसान घटना नहीं, पैदा होने वाला या मरने वाला तो फॉर्म है, लेकिन वो शिव किसे कहती है, जो वो ऑब्जर्व करने वाला है वही शिव है, क्योंकि शिवस्वर ज्योतिमर्म। और जब हम उस शिव को, उस कॉन्शियसनेस को पहचान जाते हैं अपने अंदर, तो हम भी वही पहचान बन जाते हैं। फिर हमें ये जो मैं और वो, ये और वो, ये जो द्वैत है, ड्वैलिटी है, धर्मों की ड्वैलिटी, इंसानों की ड्वैलिटी, भाषाओं की ड्वैलिटी, रिलीजन रीजन की ड्वैलिटी, इंसानों की ड्वैलिटी, वो ड्वैलिटी खत्म हो जाती है। और आज के दिन ये संदेश बहुत ही बड़ा है कि उस द्वैत से अद्वैत के जर्नी को कैसे हम, सच्चा टीचर वही है, सच्चा गुरु वही है जो हमें उस एकात्मता की, उस वननेस की ओर लेके जाए।
1: दोईचु बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुंद।

आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं मिले जुले गीतों के इस प्रोग्राम के साथ। हर अमावस को तुम्हारा इंतजार, मेरी हर पूनम रात को अमावस कर गया। मैं हूं रमेश।

कच्ची मिट्टी के रिश्ते मुश्किलों की आंच में दबकर पक जाते हैं, जब सदियों तक निभ जाते हैं।

लहर की तरह साहिल से छूकर लौट जाते हो सागर में, और मेरे मन की भीगी रेत पर खेलते यादों के बच्चे उम्मीदों के घरौंदे बनाते हैं, टूटते हैं, लेकिन अब इनका रोज रोज बनना टूटना बच्चों का खेल नहीं रहा।

फरिश्ते अगर रास्ते हो जाते, खत्म बीच के फासले हो जाते, मैं और एक तू मिलकर एक मैं और एक तू मिलकर हम मोहब्बत के काफिले हो जाते।

अंधेरों में परछाइयों की तरह घुल गए थे, अब जुदाई की धूप में हो गए हैं, अलग अलग अलग अलग परछाइयों की तरह।

झील जो बरसों से बस गई है, उसके सीने में जागती है तमाम रात। झील के सीने पर इठलाती बलखाती चलती यादों की लकीरें जो मुझे न सोने देती।

दोस्तों, मिले जुले गीतों का ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। अब चाहेंगे आपसे इजाजत, जरूर बताइएगा आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। आदाब, नमस्ते।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 2, सहयोग कृष्णा, रिकॉर्ड एडिट प्रस्तुत करता नैना, निर्देशन भारत सोपोरी।

नमस्कार, 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना स्टेशन रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और मैं हूं आपके साथ आपके अपने रेडियो दोस्त नैना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है वादियां गुनगुना रही होंगी और आपका दिल मुस्कुरा रहा होगा। दोस्तों, आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि आज हमारे शो शक्तिका का दूसरा एपिसोड आपके रेडियो सेट पर दस्तक दे चुका है। शक्तिका एक ऐसी यात्रा जहां हम बात करते हैं उस अदम्य साहस की जो हर महिला के भीतर छुपा है। आज हम बात करेंगे उस त्रिकोण की जिस पर आज की हर महिला लगातार संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, और वो है संघर्ष, सफलता और संतुलन, यानी कंफ्लिक्ट, सक्सेस एंड बैलेंस। दोस्तों, अक्सर जब हम किसी सफल महिला को देखते हैं तो हम उसकी चमक देखते हैं, उसकी कामयाबी की तालियां सुनते हैं, लेकिन उस चमक के पीछे कितने अंधेरे रास्तों से वो गुजरी है, कितनी रातों की नींद उसने कुर्बान की है, ये शायद ही कोई देख पाता है। संघर्ष कोई कमजोरी नहीं है दोस्तों, संघर्ष तो वो मिट्टी है जिसमें तपकर एक आम लड़की शक्तिका बनती है। चाहे वो घर की चार दीवारी में रहकर पूरे परिवार को संभालने वाली हमारी गृहिणी हो, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस के कैबिन में बैठकर बड़े फैसले लेने वाली कोई लीडर, संघर्ष दोनों का है, बस रूप अलग है। चलिए इस खूबसूरत सी बात के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद प्यारे और मोटिवेशनल गाने के साथ। आप सुनिए यह गीत, मैं मिलती हूँ आपसे इसी मोड़ पर।

वेलकम बैक दोस्तों, 90.0 FM रेडियो वितस्ता पर आप सभी सुन रहे थे एक खूबसूरत नगमा, और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नैना, आपके पसंदीदा शो शक्तिका के साथ। अभी गाने पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे संघर्ष की, लेकिन इस संघर्ष का अलग पड़ाव क्या है? सफलता यानी सक्सेस। पर रुकिए, एक महिला के लिए सफलता के क्या मायने हैं? क्या सिर्फ एक ऊंचा पद या बैंक बैलेंस? नहीं, मेरे नजरिए से एक महिला के लिए सबसे बड़ी सफलता है खुद की पहचान बनाना और मर्जी से जीने का अधिकार पाना। आज हमारे समाज में ऐसी कितनी ही मिसालें हैं, कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के तटों तक लड़कियां आज आसमान छू रही हैं। कोई फाइटर जेट उड़ा रही है तो कोई सेब बागानों को डिजिटल मार्केट से जोड़ रही है। लेकिन जानते हैं इस सफलता की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है संतुलन यानी बैलेंस। दफ्तर की फाइलें भी पूरी चाहिए, घर की चाय भी वक्त पर मिलनी चाहिए, वो माँ भी है, बेटी भी और एक लीडर भी, उसे खुद के लिए भी थोड़ी फुर्सत मिलनी चाहिए। हाँ दोस्तों, वर्क लाइफ बैलेंस सुनने में जितना फैंसी लगता है, निभाने में उतना ही मुश्किल है। अक्सर महिलाएं दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को भूल जाती हैं।

इस संतुलन को बनाने के लिए तीन सुनहरे नियम हमेशा याद रखें। पहला, ना कहना सीखिए। हर काम को खुद अकेले करने की जिम्मेदारी मत लीजिए। काम बांटना कमजोरी नहीं समझदारी है। दूसरा, मी टाइम निकालिए। दिन भर सिर्फ 24 मिनट खुद को दीजिए, चाहे किताब पढ़िए, चाय पीजिए या सिर्फ खामोशी से बैठिए। अपराध बोध को अलविदा कहिए। आप कोई सुपर वुमन नहीं है, आप एक इंसान हैं। अगर कभी भी घर बिखरा हुआ है या खाना थोड़ा लेट हो गया है तो खुद को कोसना बंद कीजिए। चलिए इसी सकारात्मक सोच के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है मेरे प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपके रेडियो दोस्त नैना और आप सुन रहे हैं शक्ति का एपिसोड 2 सिर्फ रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर। तो मेरी प्यारी सहेलियों, बहनों और माताओं, और हाँ हमारे वो पुरुष श्रोता जो इस वक्त अपनी माँ, बहन या पत्नी के साथ बैठकर ये शो सुन रहे हैं, आप सभी से बस यही गुजारिश है कि अपने घर की शक्तिका को पहचानिए, उनके सपनों को सिर्फ पंख मत दीजिए बल्कि उन्हें उड़ने के लिए थोड़ा सा खुला आसमान भी दीजिए, उनका हाथ थामिए और उनके संघर्ष में साझेदार बनिए। जाने का वक्त हो चला है लेकिन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ एक बेहद ही खूबसूरत और रूहानी गीत के साथ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अपने रेडियो दोस्त नैना को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: सोने से सपने।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम शक्ति का एपिसोड 2। सहयोग कृष्णा, रिकॉर्ड एडिट प्रस्तुत किया नैना ने, निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान हैं कश्मीरी फोक सूफी गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती नीरजा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने। रिकॉर्ड निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता भारत सोपुरी।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी, लेके आया हूं आज कार्यक्रम गुप्तगु का एक और अंक। गायन एक सामान्य शब्द है जो संगीत गाने की क्रिया को दर्शाता है, जबकि सूफी गायन एक विशेष प्रकार का भक्ति संगीत है जो सूफी संतों के आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। सूफी गायन में सूफियों की रहस्यात्मक भावनाओं, प्रेम, विरह और भक्ति को व्यक्त किया जाता है। कवाली सूफी संगीत का एक रूप है, लेकिन इसमें गजल, तराना और धमार जैसे अन्य रूप भी शामिल होते हैं। आज का ये विशेष कार्यक्रम गुप्तगु एपिसोड 5 समर्पित है उन सुरों को जो दिल को छूते हैं, आत्मा को मंत्र मुग्ध करते हैं। हमारे साथ है राष्ट्रीय स्तर की गायिका, एक सूफी फनकार और खास तौर पर ये आवाज जो कश्मीर घाटी की सरजमीं से उठकर देश और दुनिया के दिलों तक पहुंची है। स्वागत करते हैं आज के आमंत्रित मेहमान का। स्वागत है श्रीमती नीरजा पंडित जी, आपका आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, आपने वितस्ता रेडियो पे मुझे आमंत्रित किया है और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सुरमई यात्रा की। सबसे पहले नीरजा जी, आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में आपके आने से। आज हमारा ये स्टूडियो पावन हो गया है।
1: नहीं, मैं ये कहूंगी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आज मौका मिला है आपके इस पवित्र जगह पे, आपके स्टूडियो में आने का एक अवसर मिला है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना संक्षिप्त परिचय दें ताकि हमारी श्रोता आपको और अच्छे से जान सके।
1: मैं बेसिकली कश्मीर से हूं, नीरजा पंडित के नाम से जानी जाती हूं। पहले मैं नीरजा मुंशी थी शादी से पहले, और कश्मीर में थी। कश्मीर में एक छोटी सी जगह है श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पे, जहाँ की हमारी शिव योगिनी ललेश्वरी है, उसी जगह को मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ की हवा खातून भी है
0: जी।
1: और पामपुर उस जगह का नाम है, और पामपुर बहुत पॉपुलर है, फेमस है काफी चीजों के लिए, जिसमें केसर उगता है
0: जी।
1: तो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो सब जानते हैं, तो मैं उस जगह को बिलोंग करती हूँ।
0: सभी श्रोताओं को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रेडियो वितस्ता हमेशा कश्मीर के साथ जुड़ा है, क्योंकि इसका जो वजूद है वो कश्मीर के साथ जुड़ा है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने श्रोताओं को कश्मीर की उन हसीन वादियों से और वहाँ की जो खास बातें हैं उनके साथ आपको जोड़ूं, और आप हमारे साथ जुड़े और हम रेडियो वितस्ता के माध्यम से आपकी जिंदगी के हम सफर बन पाए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे पहले मेहमान है वो गायक जिन्होंने मंचों, फिल्मों और एल्बम्स में अपनी आवाज से जादू बिखेरा है। सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि संगीत में आपका सफर कैसे शुरू हुआ।
1: एक्चुअली मुझे संगीत का जो एक हेरिटेज होती है ना, वो मुझे मेरी माँ से मिली है
0: जी।
1: और उनको उनकी माँ से मिली थी
0: जी।
1: तो मेरी माँ जब कश्मीर में फंक्शंस में गाया करती थी, फैमिली फंक्शंस में, मैं बहुत छोटी थी तो मैं उनको देखती थी और मैं भी इंस्पायर होती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, बहुत छोटी थी, और मुझे वो आकर्षण होता था उनके संगीत की तरफ, और मैं उनके साथ बैठ के उनको फॉलो करने की कोशिश करती थी, उन गानों को गाने की कोशिश करती थी। हमारे कश्मीरी फोक म्यूजिक में तुम्बक नर एक इंस्ट्रूमेंट है जो शादियों में बजता है, जैसे ढोलक है पंजाबी में, तो वैसे वो तुम्बक नर मैं कोशिश करती थी बजाने की। छोटी सी थी बट एक जिद मेरी थी, वो मुझे थोड़ा बहुत याद है। मैं मम्मी के बगल में बैठ के उन गानों को रिसाइट करने की कोशिश करती थी और गाती भी थी। फिर छोटे से ही शुरुआत हो गई थी मेरी, और फिर स्कूल के फंक्शंस में गाना गाना, पार्टिसिपेट करना, और उसमें ये था कि कश्मीर रेडियो से बजते थे बहुत अच्छे अच्छे गाने उन दिनों, लाइट म्यूजिक, फोक म्यूजिक तो था ही था, लाइट म्यूजिक में हमारे वरिष्ठ जो गायक थे, जिसमें कैलाश मेहरा साधु जी हमारे, वो सारे मेरे गुरु समान हैं, और शमीमा देव जी थी, आरती तिकू जी थी, कई सारे सिंगर्स थे जो गाया करते थे, और उन गानों को भी मैं सुन सुन के रिसाइट करती थी और फंक्शंस में गाती थी स्कूल के। वहां से मुझे एनकरेजमेंट मिलती रही और सब बोलते थे तो बिल्कुल वैसे ही गाती है। और बचपन में एक ग्रेस्पिंग पावर भी होता है
0: जी।
1: तो उन गानों को मैं एग्जैक्टली उसी ट्यून में उसी तर्ज में गाने की कोशिश करती थी और वो अच्छा लगता था सबको। और फिर एनकरेजमेंट मिलती रही टीचर्स से कि नहीं तुम सब्जेक्ट ले लो, बिकॉज कश्मीर में सब्जेक्ट नहीं था स्कूल लेवल पे। तो जब 10th पास किया फिर मैंने म्यूजिक सब्जेक्ट लिया कॉलेज में और अपने गुरुजी से पंडित शंभुनाथ सोपरी जी जो कश्मीर के प्रख्यात म्यूजिशियंस में से रहे हैं, ही इज द मास्टर ऑफ क्लासिकल वर्ल्ड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर कॉलेजेस में, कॉलेज लेवल पे उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने सब्जेक्ट लिया और उनसे सीखना भी शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है ना संगीत की। बस वहाँ से एक सीखने का सफर शुरू हो गया, फिर साथ साथ रेडियो टीवी वो सब भी
0: मतलब साथ साथ चलता
1: साथ
0: रहा।
1: साथ चलता रहा।
0: क्या मैं मानूं आपको ये विरासत में संगीत और जो संगीत के साथ आपकी जिंदगी चल रही है, जो आपकी संगीत की यात्रा है
1: जी,
0: तो क्या हम माने कि ये आपको विरासत में मिली है?
1: विरासत में तो मिली थी, हमारी फैमिली में सब गाते हैं, सबको भगवान ने वो वरदान दिया है गाने का,
0: सरस्वती माँ का आशीर्वाद।
1: पर मुझे एक जब मैं वही मैं आपको बोल रही थी कि मैं गाने जब गाती थी स्कूल में रेडियो के गाने जो बजते थे उसमें पंडित भजन सोपुरी जी की नई नई कंपोजिशंस और बहुत मुश्किल कंपोजिशंस, और उसको मैं गा देती थी इनोसेंस में ही गा देती थी। बेशक उस वक्त बोल भी आधे समझ में नहीं आते थे बिकॉज पोइट्री एक पोइट्री होती है, बट बचपन में वो मैं ट्यून को पकड़ती थी, उन कंपोजिशंस को मुझे कुछ अट्रैक्शन मिलती थी और मुझे लगता था मैं भी कभी गाऊं रेडियो पे, मैं भी कभी दूरदर्शन में गाना गाऊंगी। ये एक वहीं से मुझे एक स्पार्क जैसी भगवान की तरफ से था कि मुझे कुछ करना है म्यूजिक में। तो भगवान की कृपा रही और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद रहा और मैंने कॉलेज टाइम से ही फिर शुरू किया सीखना क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड सब्जेक्ट भी लिया और प्लस रेडियो में ऑडिशन करके शुरू किया मैंने एक प्रोफेशनल सिंगिंग, प्रोफेशनल सिंगिंग जी, जी जी जी। तो बहुत हार्ड वर्क होती है तभी जब हम इसमें पूरा डिवोट करेंगे अपने टाइम को। विरासत तो थी बट एट द सेम टाइम इंटरेस्ट और उसमें हार्ड वर्क।
0: आपने अपने इस सफर को खुद अपनी मेहनत से यहाँ तक बनाया है।
1: फिर मुझे ये भी नहीं पता कहाँ तक पहुँची हूँ मुझे तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं है, लिटरली लगता है जो मुझे पाना चाहिए था। बट ठीक है, डेस्टिनी में जितना लिखा होता है वो मिलता है हमको
0: जी।
1: ये था कि रेडियो टीवी के करने से काफी भजन जी के अंडर हम काम करते थे, भजन सोपोरी जी जो हमें मेरे गुरुजी भी है, मेरे गुरु भाई भी है, वो सब जानते हैं उनको, इंटरनेशनल वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट रहे हैं वो संगीत के, संतूर माएस्ट्रो। एंड देन कश्मीरी फोक म्यूजिक को उन्होंने कैसे रेवोल्यूशन लाया और उन धुनों को लेके मैं इंस्पायर होती थी, उनका कनेक्शन मेरे साथ है। वाई? बिकॉज मैं उन्हीं धुनों को सुन सुन के इंस्पायर होती रही और मैं अट्रैक्ट होती रही टुवर्ड्स दिस लाइट म्यूजिक, कश्मीरी म्यूजिक एंड सॉन्ग्स, जो मैं फिर शुरुआत भी हो गई रेडियो कश्मीर से और दूरदर्शन से।
0: हम आज गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में हैं और हमारे श्रोताओं से आज मुखातिब है। आपसे बहुत सारी बातें जानेंगे और श्रोताओं की जो जिज्ञासा है, उम्मीद है कि उन सारे सवालों के जवाब हम नीरजा जी से लेंगे। पर मैं चाहूंगा कि हमारी श्रोता इंतजार कर रहे होंगे आपके कंठ से सुनने के लिए।
1: जरूर जरूर जी। मैं एक गुरुस्तुति से ही शुरू करूंगी, शुरुआत उन्हीं से मैं करना चाहूंगी
0: जी, जी।
1: एक छोटी सी सूफी भजन से पॉपुलर भजन है ये, नुसरत फतेह अली जी ने गाया है, तो मेरा जबरदस्त फेवरेट भजन है ये सूफी भजन।

0: बहुत खूब निर्जा जी, आपने अभी कश्मीर की बात की, कश्मीर के बारे में आपने बोला, तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, हम सब के लिए, चाहे हम किसी भी प्रांत में रह रहे हो, हम सब के लिए माँ बोली कितनी महत्वपूर्ण है? क्या हमारी पहचान माँ बोली से ही हो सकती है? हमारे लिए माँ बोली को बचा के रखना, उसका संरक्षण करना कितना जरूरी है, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो किसी प्रांत की बात हो।
1: भाषा एक ऐसी चीज है, आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, कहीं भी आपको अपने रीजन का कोई दिखता है, जब तक आप उसको अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि वो मेरे प्रांत का है या कहाँ का है। जब अपनी भाषा में हम बात करते हैं, किसी भी जगह पे हो हम, तो एक अलग ही अपनापन लगता है
0: जी।
1: तो ये भाषा का एक बहुत बड़ा, हमारे लिए एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी है
0: जी।
1: भाषा नहीं तो अंग्रेजी सब बोलते हैं, तो फिर हमारे में और दूसरी जगह से होंगे या प्रांत से होंगे, जो अपनापन हमारी भाषा में बात करने से होता है, तो वो हमको किसी और अंग्रेजी में, नेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल लैंग्वेज में नहीं आएगा
0: जी।
1: वो तो सबको करना ही पड़ता है, बिकॉज काम करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए हमको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, वो सब तो करना ही पड़ेगा काम चलाने के लिए। बट जब हमको अपनेपन की बात आती है, तो वहाँ पे हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा से ही हमारी पहचान है। और कश्मीर से निकलने के बाद मैं मुंबई चली गई मेरी शादी के बाद
0: जी।
1: तो हमारे पास कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड मेरा, जो मैंने कश्मीर में रेडियो गाने गाए थे, टीवी पे गाने गाए थे,
0: सब कुछ छूट गया था,
1: कश्मीर में ही छूट गया था। और उसको रिवाइव करने के लिए, क्योंकि संगीत मैं कर ही रही थी, कश्मीरी म्यूजिक तो मेरा था ही वहाँ पे, तो उसको मैं कैसे बचाऊं, क्योंकि छूट गया, और आगे की जनरेशन तक कैसे हमारी ये मातृभाषा आगे जाएगी
0: जी।
1: तो मुझे म्यूजिक का एक बहुत बड़ा माध्यम लगा, म्यूजिक के थ्रू हम इसको कर सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं भाषा को। तो मैंने एल्बम्स बनाने शुरू किए, उसको री रिकॉर्ड किए, मैंने जो कश्मीर के पॉपुलर गाने थे, जो मैंने भी गाए थे और जो वहाँ के बाकी सिंगर्स ने भी गाए थे, चूंकि रिकॉर्ड कुछ था नहीं अपने पास, तो उसको रिवाइव करने के लिए मैंने काफी मेहनत की, एफर्ट लगाया और उसको रिकॉर्ड किया। और तो रिकॉर्ड करने के बाद फिर सब जगह जगह मैंने भेजी वो सीडीज, जहाँ जहाँ हमारी कश्मीरी बरादरी थी उनको भेजा मैंने, उनको दिए मैंने सुनने के लिए। और जो बच्चे पैदा हुए थे, जो बड़े हो रहे थे, तो म्यूजिक एक बहुत बड़ा माध्यम है। अगर हम कश्मीरी गाने चलाते रहेंगे घरों में, हमारे जो रीजनल गाने हैं, तो हमारे बच्चों के कानों तक पहुंचती है चीजें सुनने को, फिर उनको फिर वो एडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके थ्रू उनकी भाषा उनको समझ में आने लगेगी। मैं छोटी सी एग्जाम्पल अपनी ही दे दूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने पहले कहा कि मेरे को भाषा का कुछ ज्ञान नहीं था, बहुत छोटी थी, मतलब थर्ड फोर्थ सेकंड से ही इनफैक्ट शुरू किया था। जो मैं गाने गाती थी, शमीमा आजाद जी के, कैलाश मेहरा साधु जी के, आरती टिक्कू जी के, मुझे सिर्फ ट्यून पकड़ती थी, भाषा मुझे उस वक्त कुछ नहीं समझ में आती थी। बट जब मैं प्रोफेशनली इसको करने लगी, धीरे धीरे धीरे धीरे, जब मैंने रेडियो पे गाना शुरू किया, मैं 11th में थी, छोटी थी, क्लासिकल तो सीख ही रही थी, मगर ये पोइट्री मुझे किसी ने सिखाई नहीं, ये मुझे अपने आप ही फिर इसकी समझ आ गई करते करते करते करते, जब मैंने गाने गाने शुरू किए, और मेरी मैच्योरिटी लेवल तो धीरे धीरे फिर इंसान की आई जाती है, और मैंने समझा कि नहीं, ये तो फिर करते रहने से, सुनते रहने से, और जितना इसके साथ जुड़े रहो इन गानों के साथ, वो समझ आ गई मुझे। तो मुझे लगा कि ये म्यूजिक के फॉर्मेट में बच्चे सुनेंगे गाने, कश्मीरी गाने चलते रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरा बेटा है, वो भी बचपन से मेरे साथ करता रहा है, सीखता रहा है, सुनता रहा है, और मेरे ये एल्बम्स पे काम उसने भी किया जब वो बड़ा हो रहा था
0: जी।
1: सिंस उसका म्यूजिक ही उसने अडॉप्ट किया है, म्यूजिक में ही है वो। बट उसको ये बात, उन दोनों बच्चों को, मेरी डॉटर भी है, ये गाने सुनते सुनते उनको कश्मीरी भाषा मैक्सिमम आ गई, जबकि हम घर में भाषा बोलते हैं कश्मीरी, बट म्यूजिक के थ्रू उनको ज्यादा हेल्प हो गई
0: जी।
1: तो मुझे लगा ये बहुत बड़ा माध्यम है हमारा संगीत, अगर हम कश्मीरी गाने गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे रेडियो पे, उसको एडॉप्ट करेंगे, तो हमारी भाषा जल्दी पकड़ सकते हैं बच्चे।
0: नीरज जी, आपने बहुत सारी भाषाओं में गाया है और अलग अलग संगीतकारों के साथ आपने काम किया है, पर अभी मैं इसी बात पर रहना चाहूंगा, कश्मीरी भाषा है वो हमारे लिए, हमारे संस्कृति के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और किस तरीके से हम उस कश्मीरी भाषा को समझ पा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लल दिद की बात करूंगा, क्योंकि उनके जितने भी वाक है वो कश्मीरी में ही है
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि उसके बारे में आप बताएं।
1: जी, हमारे कश्मीर में तो काफी वरिष्ठ सूफी सेंट्स रहे हैं और बहुत जबरदस्त लेवल के ऊंची अवस्था में रहने वाले सेंट्स रहे हैं, पीरवर रेशवर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी सारे गुप्त संत भी थे जो एकदम हाई लेवल के, उसमें से ललेश्वरी भी थी वन ऑफ देम, और वो शिव योगिनी थी, उनको कहा जाता था ललेश्वरी माता। तो मैं उसी जगह को बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से उनका वो सब सुना है, मैंने देखा तो नहीं है बट सुनते हुए, फिर उनके वाक सुनते हुए, सुने भी हैं, सीखे भी हैं, तो काफी सारे वहाँ के हैं सूफी पोइट्स हैं और संत परंपरा से जुड़े भी काफी हमारे संत हैं। तो मैंने कई गाए भी हैं, और अभी आपने ललेश्वरी की बात की है तो मैं ललेश्वरी का वाक आपको सुनाते हुए फिर एक सूफी गाना ही सुनाऊंगी। सूफी मतलब फिलोसोफिकल पोइट्री है जो डोलवाल साहब का है। डोलवाल साहब बहुत बड़े शायर थे, कंपोजर थे, सिंगर थे उस जमाने के, तो उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है मेरे एक एल्बम में, उसका नाम है रिश्वर
0: जी।
1: तो उसमें सूफियों के ही गाने हैं उस एल्बम में, तो ये भी एक गाना है। मैं ललवाक से शुरू करूंगी।

0: मुझे भी उस बचपन के दौर में लिया और उस कश्मीर की वादियों में, उन गलियों में आपने मुझे पहुंचाए इस गीत के जरिए जो आपने अभी गाया मेरी और आपकी माँ बोली में। श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा कि माँ बोली हमारी पहचान है, हमें अपनी माँ बोली को बचा के रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी भाषा हो, क्योंकि हमारी पहचान हमारी मातृबोली से ही होती है। जो हम अपनी माँ से सीखते हैं वही हमारी मातृभाषा होती है, और चाहे हम दुनिया के सभी भाषाएं बोलें पर हमारी पहचान हमारी मातृभाषा होती है। इस चर्चा को आगे ले जाते हैं और बहुत से हमने बातें करनी है नीरजा पंडित जी के साथ। अभी हम बात कर रहे थे कि आपने अलग अलग भाषाओं में गीत गाए हैं
1: जी।
0: तो जो हमारा प्रांत है इसमें पंजाबी बहुत ज्यादा बोली जाती है और हरियाणवी के साथ साथ पंजाबी गीत गाए और सुने जाते हैं
1: जी।
0: तो मैं चाहूंगा कि इन प्रश्नों के उत्तर के बाद आप एक पंजाबी गीत, कोई सा भी आपके मन का हो, वो हमारे श्रोताओं को सुनाए।
1: जरूर जरूर।
0: नीरजा जी, आपसे अगला प्रश्न मैं ये करना चाहूंगा कि सूफी संगीत का महत्व हमारे जीवन में क्या है, आज के दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: सूफी मतलब सूफी संगीत तो अभी काफी प्रचलित है। मैं तो ये कहूंगी कि संत परंपरा से हम जुड़े हुए रहे हैं हमेशा। हमारी जितनी भी पोएट्री है वो सब संतों की वाणी है, वो सब सूफियों की वाणी है। तो वही गागा के वही हम यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, उनको ही, उन्हीं कलामों को गागा के, तो वो हमारे जीन्स में ही है। सूफियाना म्यूजिक और सूफी म्यूजिक, जो भी म्यूजिक नहीं होता है लिरिकली, मतलब वो पोएट्री जो वहाँ की है
0: जी।
1: ये दुनिया में मुझे लगता है, मैं कई जगह जाती रही हूँ, बाहर इंटरनेशनल शोज के लिए गई हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी कश्मीरी पोएट्री इतनी रिच है, हमारी हेरिटेज इतनी रिच है, जो हमारी वहाँ की परंपरा है रिचेस्ट मुझे लगती है हमारी जो भाषा है, और जितने भी हमारे कलाम हैं कश्मीरी, चाहे वो सूफियों के हैं चाहे वो संतों के हैं, तो मैं उस परंपरा को बिलोंग करती हूँ। ये मेरी भाग्य की बात है कि मैं कश्मीर से जुड़ी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी पंडित हूँ, तो हमारे खून में ही दौड़ता है वो सब पोइट्री जो हमारी है। जैसे मैंने अभी ललेश्वरी जी की बात करी, एक मिस्टिक पोइट्री है वो, तो आम भाषा नहीं है, तो काफी इनको गाते गाते आपको एक अलग ही रूहानियत महसूस होती है, अंदर एक अलग ही पीस मिलता है, आपको लाइफ के बारे में समझ आती है, फिलोसफी समझ में आती है, और इसमें कोई दीन कोई धर्म की बात ही नहीं है, इसमें एक यूनिवर्सल बात है, एक लाइफ की बात है, एक लाइफ की फिलोसफी होती है इन पोइट्रीज में, तो ये बिल्कुल रिलीजन के परे होती है ये चीजें, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है ऐसी चीजें जो फिलोसफिकल चीजें हैं। उसमें रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे गुरुओं के संग में रह के और उनका आशीर्वाद पाते पाते मेरा ज्यादा झुकाव इन्हीं चीजों की तरफ रहा है, मैक्सिमम झुकाव तो मेरे गुरुजी है, मेरी गुरु माँ है, मेरे माता पिता, सबका आशीर्वाद उनका है, और मैं इस चीज को अलग लेवल पे महसूस करती हूँ इन चीजों को गाते गाते
0: जी। जी, तो जैसे आपने कहा तो आज के दौर में सूफी संगीत की प्रासंगिकता जो है वो आज भी है, पहले भी रही है और आगे भी रहती रहेगी,
1: रहना चाहिए, बिकॉज मैं अभी यही बोल रही थी कि ये फिलोसफी लाइफ की, ये पोइट्री जो है ये इतनी रिच है, ये असलियत सिखाती है हमको जिंदगी की, इसमें कैसे चलना है, तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा भविष्य हो सकता है अगर वो इस चीज को समझे और इस चीज को आगे, इस परंपरा को आगे चलाएं, ये पोइट्री को गाएं बजाएं और समझे।
0: और कोई यादगार मंच अनुभव आपका?
1: वो तो बहुत सारे हैं, जैसे इवेंट्स में मैं शोज करती रही हूँ काफी सारे, तो पंजाबी भी गाया है, तेलुगु गाया, काफी लैंग्वेजेस में गाया है, गुजराती, मराठी, राजस्थानी फोक मैंने काफी गाया है, फिल्मों में गाया राजस्थानी, इवन काफी सारे मराठी में भी गाया है, तो संस्कृत में गाया है, तो वो सब श्लोक्स वगैरह और दुर्गा कवच वगैरह मैंने किया था, तो वो तो चलता रहा है, कमर्शियल काम तो चलते रहे हैं, बट ये है कि पंजाबी में मैंने गाया है जी।
0: तो आप एक पंजाबी कुछ हमारे श्रोताओं के लिए करें?
1: जरूर, क्योंकि मैं आज हरियाणा में हूँ तो यहाँ के जो श्रोता है उनके लिए मैं एक छोटा सा, ये भी मेरा फेवरेट सूफी गाना है
0: जी।
1: नुसरत फतेह अली जी का है
0: जी।
1: क्योंकि मैं इन सारे लेजेंड्स को सुनती हूँ, उनसे सीखती हूँ, जितने भी सारे हमारे मेरे से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं रोज ही सीखती हूँ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो ये एक मेरा फेवरेट सूफी गाना है।
0: Please.

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता। कार्यक्रम चल रहा है गुफ्तगू, और आज हम हमारे देश की और विश्व प्रसिद्ध गायिका से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ है श्रीमती नीरजा पंडित जी, जो मुंबई से खासकर हमारे अंबाला के श्रोताओं के लिए इस समय स्टूडियो में है और बात कर रही है। नीरजा जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज के समय में संगीत में जो बदलाव आ रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, संगीत ही नहीं, हमारी जिंदगियों में भी बदलाव तो आता ही है
0: जी।
1: और कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो हर चीज में बदलाव आता ही है, तो हमारी जिंदगियों में भी बदलाव आया है। तो जैसे हमारे संगीत को लेके मैं बात करूंगी, काफी कुछ चेंजेस आ गई, बिकॉज जो जनरेशन अभी बड़ी हो रही है, जो ग्रोइंग जनरेशन है, जो इस फील्ड में है, म्यूजिक के फील्ड में है या एक्टिंग के फील्ड, किसी भी फील्ड में है, तो बदलाव तो आना ही है, मगर वो बदलाव भी अच्छे ढंग से आए तो बहुत अच्छा है,
0: सकारात्मक होना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट, हाँ जी हाँ जी। तो उस बदलाव को हमको देखना है, सुपरवाइज करना है, अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, हमारा क्रिएटिव वर्क है कुछ, या जैसे मेरे म्यूजिक को लेके मैं बात करूंगी कि जब कुछ नया गाना रिकॉर्ड होता है, जैसे अभी सलीम सुलेमान म्यूजिक डायरेक्टर्स है, म्यूजिक इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ संगीतकारों में से हैं
0: जी।
1: तो उनके साथ कश्मीरी फोक म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने, अपने मर्चेंट रिकॉर्ड्स उनकी म्यूजिक कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग म्यूजिक कंपनीज, उसमें कश्मीरी म्यूजिक को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, वो ओरिजिनल म्यूजिक भी रिकॉर्ड करते हैं। तो उनका भूमि एक एल्बम आता है हर साल
0: जी,
1: उसमें वो 10 गाने रखते हैं, और वो अलग अलग रीजन्स को लेके
0: बनाते
1: हैं, अलग अलग भाषाओं में भी होता है, और फिर क्लासिकल बेस्ड, डिवोशनल, हर तरह का गाना वो रिकॉर्ड करते हैं और रिलीज करते हैं। तो कश्मीरी फोक म्यूजिक को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो मेरा कहना ये है कि वो मॉडर्न स्टाइल भी है, और आज की यूथ जो है, जो उसको लाइक करे, उसके हिसाब से भी बना है, बट एट द सेम टाइम कश्मीरी गाना उन्होंने लिया है, जो मैंने अभी गाया आपके लिए, नाज़नीन यार मैं ये मुलाकात, ये पॉपुलर गाना रहा है कश्मीर का, ये सब जानते हैं ये गाना, तो काफी पुराना ट्रेडिशनल गाना रहा है, तो इसको उन्होंने ले लिया और कश्मीर से सिंगर को बुला के, एंड देन एक यंग बडिंग आर्टिस्ट राज पंडित, उसको लिया उन्होंने, और दोनों का कॉम्बिनेशन में ये गाना बन गया। जब गाना बना तो शुरुआत भी वैसी हुई, और धीरे धीरे धीरे धीरे उसका ग्राफ ऐसा बन गया गाने का कि गाना एज इट इज है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा गाने में, पर वो बनाने का जो तरीका था वो प्रेजेंट जनरेशन के हिसाब से, वो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक के हिसाब से बना है पूरा, बिकॉज वो रीजनल लोगों के लिए ही नहीं था, वो ग्लोबल लेवल पे वो भूमि एल्बम आता है
0: जी।
1: तो पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है वो चीज, पूरे ग्लोब में पहुंचती है वो चीज, जो उनका वो प्लेटफॉर्म है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज प्रोडक्शन है उसकी, तो वैल्यू उसकी, तो उसमें वो गाना उन्होंने जब बनाया तो उसको इतना सुंदर तरीके से उसको एलोबरेट किया है म्यूजिकली, म्यूजिक ट्रीटमेंट जो उसमें है, आप सुनेंगे, आपने सुना भी होगा
0: जी।
1: तो वो लगता नहीं है कहीं दूर दूर से कि वो गाना खराब हुआ है या डिस्ट्रॉट हुआ है, हमारी भाषा को कुछ उधर उधर किया है, नहीं, बड़े प्यार से, बड़े सुंदर तरीके से उसको उन्होंने बनाया है, प्रेजेंट किया है। तो वैसे ही मैं चाहूंगी कि एक खूबसूरती के साथ अगर हम काम करें, आज की जनरेशन जो चेंजेस तो ला रहे हैं, लानी भी पड़ेगी, बिकॉज उनकी सोच अब डिफरेंट है
0: जी।
1: वो होनी लाजमी है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए या हमको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम बैलेंस होके करें, और उसमें बेसिक जब आप रखते हो साथ में, बेस जो हमारी ट्रेडिशनल म्यूजिक है, क्लासिकल बेस म्यूजिक है, अगर वो साथ में चलता रहे और उसको उसी ढंग से पेश किया जाए और नयापन भी रहे, ताकि दोनों जनरेशन, चाहे वो पहली जनरेशन हो या आगे की जनरेशन, अभी की जनरेशन हो, सब कोई उसको पसंद करे, तो वो एक बहुत अच्छा चेंज है, उसमें कोई गलत बात नहीं है।
0: आपने अभी भूमि एल्बम की बात की और आपने राज पंडित जी की बात की, आपके सुपुत्र हैं वो, संगीत के साथ जुड़े, एक माँ जब अपने बेटे को इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देखती है तो वो क्या सोचती है?
1: मैं तो, वो हमारा तो यही रहा है कि बस उसने अडॉप्ट किया म्यूजिक को, बचपन से वो सीखता रहा। पहले वो तबले से शुरू किया, बाद में की पियानो से शुरू किया, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे वो सिंगिंग तो कर ही रहा था, सीख ही रहा था, तो गुरुओं से सीखना शुरू किया। एंड देन इनके साथ संपर्क किया, संगी सलीम सुलेमान जी, वो पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, तो वो इसी माहौल में बढ़ता रहा। और मुझे कभी भी वो ऐसा नहीं लगता है कि भाई वो कहीं पहुंचा है हाई लेवल पे, या मुझे तो ऐसा लगता है बस अभी शुरुआत है, आगे बढ़ता रहे और यही कोशिश रहती है कि अच्छा काम करे, आगे बढ़ते रहे, आशीर्वाद रहे सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहे। मेरी तो यही रहती है थिंकिंग, मैं कभी भी वो सोचती नहीं हूँ कि मैं कहीं पहुंची हूँ, मेरा बेटा कहीं पहुंचा है, बस ये है कि यू फील प्राउड। प्राउड तो होता है, प्राउड इन नॉट इन दैट सेंस कि अब इसने फतेह पा लिया है तो फिर अब बस खत्म, इतना ही है। शुरुआत अच्छी है, वो बस ब्लेसिंग है और उसकी मेहनत है, हार्ड वर्क है। बिकॉज जब आप संगीत के इसमें जगत में जाते हैं, अगर कुछ पाना है तो उसके लिए जीना पड़ता है, उसी रंग में जीना पड़ता है, आपको काफी सारी चीजों का कंप्रोमाइज करके आपको उसी लय में रहना पड़ता है, तब जाके वो चीज अचीव होती है।
0: यानी तो
1: बस कोशिश जारी है, यही
0: यानी कि त्याग, समर्पण और निरंतर काम करना बहुत जरूरी है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आज के युवाओं को
1: जी
0: आप क्या कहना चाहेंगे जो खास करके संगीत और गायन क्षेत्र में है?
1: बस यही है जो मैंने कहा कि अगर किसी को करना है, म्यूजिक में ही जाना है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, एंड देन मेहनत, हार्ड वर्क और सीखना। सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जो एक अच्छे गुरु से आपको मिल सकती है
0: जी।
1: अच्छे गुरुओं के साथ उठना बैठना सीखना, तब आप इसको अचीव कुछ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो गुरु ने सिखाया उस पे चलना, उस पे अमल करना, उसके साथ टच में रहना। मैंने अभी कहा कि जीना पड़ता है, तो संगीत को एक जीने की बात है, तो आपको बहुत उसमें समर्पण भाव से करना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत जरूरी है।
0: एक कलाकार के लिए विनम्र होना कितना जरूरी है, चाहे वो किसी भी कला का हो?
1: बहुत जरूरी है, वही तो चीज है, ऊपर वाला ही देता है ना जो हमको देता है
0: जी।
1: हमको कहीं, हम खुद से नहीं क्रिएट कर रहे हैं कुछ, जो भी हमारे, जैसे मैं गा रही हूँ तो मुझे अगर गला कुछ चल रहा है तो वो ऊपर वाला ही चला रहा है ना, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। जब वो चाहेगा तो वो गवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं गवाएगा, कुछ भी मैं करूँ। तो जब तक आप उसके शरण में नहीं हो, समर्पण नहीं हो भगवान के, आप जिसको मानते हो उनके इसमें सरेंडर भाव में नहीं हो, तो तब तक नहीं होता है कुछ, तो बहुत जरूरी है।
0: अब हम बात करते हैं बेटियों की। हमारे समाज की नींव है बेटी, जब वो बाबुल का घर छोड़ अपने पिया के घर जाती है। इसके संदर्भ में आपने अपनी एक सीरीज साजे कश्मीर में एक गीत गाया है
1: जी,
0: तो मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं के लिए आप वो सुनाएं और फिर हम इस कार्यक्रम का अगले सेक्शन में समापन करेंगे।
1: जी जी, ये एक बहुत ही सुंदर रचना है, नजीर दास जी कश्मीर के बहुत वरिष्ठ पोएट्स में से रहे हैं, उन्होंने लिखा है। तो जब मैंने इसके लिरिक्स सुने, किसी से मैंने सुने थे और मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड किया और वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और इसके कंपोजिशन पंडित भजन सुपुरी जी की है। फोक बेस्ड कंपोजिशन है, बहुत पॉपुलर कंपोजिशन है पंडित भजन सुपुरी जी की है।

0: इंडियन बाबू, उसमें भी मैंने कुमार शानू जी के साथ एक डिबेट किया था. एंड देन शीन बनी थी कश्मीर पे, कश्मीरी पंडित एग्जोडस पे एक फिल्म बनी थी, उसमें भी नदीम श्रवण जी का म्यूजिक था, उसमें भी मैंने एक गाना कुमार शानू जी के साथ गाया था. और एक एग्जोडस का गाना था जिसमें सारे इंडस्ट्री के 5-6 सिंगर्स ने गाया था, तो मैंने भी उसमें एक पोर्शन गाया था. तो ये फिल्म, और फिर एक फिल्म आई थी ट्रैफिक सिग्नल, शमीर टंडन जी का म्यूजिक, उसमें मैंने टाइटल सॉन्ग गाया था. तो ऐसी कई, लालची एक फिल्म थी उसमें मैंने दिलीप सेन समीर सेन जी के साथ गाना गाया, उनके लिए गाना किया था. तो वो फिल्मी और राजस्थानी फोक म्यूजिक पे, राजस्थानी फिल्मों में मैंने गाया है. वो इसलिए मैं राजस्थानी इसमें चली गई रीजन में, मेरे गुरु जी, वन ऑफ माई गुरुज, मैंने प्लेबैक सिंगिंग की भी ट्रेनिंग साथ साथ लेनी शुरू की.
1: ठीक है.
0: तो जो फिल्म इंडस्ट्री के वरिष्ठ म्यूजिक डायरेक्टर्स में से हैं, पोएट भी थे, राइटर भी थे, और ही वॉज अ वेरी बिग डांस मास्टर ऑल्सो. तो उनको मैंने एज गुरु प्लेबैक सिंगिंग के लिए मैंने माना उनको. मैं उनके पास सीखती रही और उनके साथ काफ़ी शोज भी करती थी मैं, जैसे भजन संध्या है या गजल कॉन्सर्ट है, तो वो भी करती रही. और राजस्थानी फिल्मों में मैंने उनके लिए गाया
1: जी,
0: शंभू सेन जी उनका म्यूजिक, उनका नाम है. वो भी अनफॉर्चुनेटली जल्दी चले गए. तो ये ऐसे ऐसे गुरुओं का संग मुझे रहा है और मेरी यात्रा चलती रही है जो संगीत की है. और फिर मेरी सूफी म्यूजिक तो मेरे खून में है, जो संत परंपरा से जुड़ी हूँ मैं कश्मीर से. तो मेरे एक सूफी गायक, बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर गायक रहे हैं, अख्तर आजाद जी, अपने जमाने के बहुत बड़े कवाल रहे हैं वो. उनसे मैंने सूफी गानों की ट्रेनिंग ले ली. तो वो भी चलता रहा, अभी भी मैं सीखती हूँ उनसे. तो चलता रहे, सीखने का सफर खत्म नहीं होता है. और ये फिर कॉन्सर्ट्स काफी किए मैंने, जैसे फिल्म कॉन्सर्ट्स होते हैं, शोज होते हैं, उसमें बप्पी लहरी जी उनके साथ गाया है, दिलीप सेन समीर सेन जी के साथ गाया है, देन जतिन ललित जी के साथ शो किया है, एंड देन ललित सेन जी के साथ किया. तो ऐसी काफ़ी वरिष्ठ जो म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं, तो ये मौका मिला है मुझे कई बार कि मैंने
1: इसके साथ जुड़ा सा एक साधारण सा प्रश्न मैं करना चाहता हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री के, चाहे वो संगीतकार है, चाहे वो कलाकार है
0: जी,
1: चाहे वो लेखक है जी, जो हमारे प्रेरणा स्रोत है, उन सब महान लोगों के साथ आपने काम किया
0: जी,
1: तो जब आप उस मंच पर होते हैं तो जिम्मेदारी एक कलाकार की कितनी होती है?
0: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. मगर आपको उस चीज को फिर उस लेवल को पकड़ के रखना पड़ता है, इनफैक्ट ग्रो करना पड़ता है. वही एक रीजन है कि आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि आपको उसको एक मेंटेन करना पड़ेगा. अगर आपने कोई चीज पाई है, अगर आप उस लेवल से फिर नीचे गिर जाते हो तो कोई फायदा नहीं
1: है.
0: तो जितना हम सीखेंगे, जितना हम उस चीज में जुड़े रहेंगे, उतना आप उस लेवल को रख पाते हो. फिर
1: ये एक तरीके से एक सीख भी है उन कलाकारों के लिए जो नवोदित कलाकार है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनमें निरंतरता वो रहनी चाहिए, मेहनत उनको करनी है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं.
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. बिकॉज अगर कोई लेवल पे आए हैं तो उस लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी, वो तभी होगा जब हम जुड़े रहेंगे और मेहनत करेंगे.
1: नीरजा जी, आपसे बात करने का जो मन है वो बहुत समय तक करने का है, पर समय के अभाव में हम चाहेंगे, अभी आपने बात की गजल की
0: जी,
1: तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी कोई मनपसंद गजल सुनाए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे.
0: जी, मेरी एक फेवरेट गजल है, वो सबकी फेवरेट है, आज जाने की जिद ना करो.
1: क्या बात है,
0: गजलें तो बहुत है, बेशुमार है,
1: क्या बात,
0: जो मैं परफॉर्म करती हूँ, बट अभी मैं श्रोताओं के लिए ये पॉपुलर गजल
1: जी
0: फरीदा खानम जी की है.

0: निर्जा जी, हम भी नहीं चाहते हैं कि आप आज यहाँ से जाएं और आप जाने की जिद ना करें, पर समय जो है वो हमें इजाजत नहीं देता है। और आपसे अंत में ये जानना चाहूंगा कि आज आप पहली बार FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आए, आपको यहाँ आके कैसा लगा?
1: मुझे तो फखर महसूस हो रहा है, मैं सच्ची बोलती हूँ, बिकॉज कश्मीर से निकल के जिस जद्दोजहद से गुजर के आपने ये सेटअप बनाया है और अपना नाम कमाया है आपके काम में भी, और आपने इस क्रिएटिव फील्ड को यहाँ पे इस जगह पे अननोन जगह जो थी आपके लिए, बट ऑब्वियसली आपको बहुत सहायता भी मिली होगी जो यहाँ पे आपके लोकल्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और गुरुओं का भी आपको संग मिला होगा, आशीर्वाद मिला होगा, तब जाके आपने ये सेटअप यहाँ पे डाला है और आपने शुरू किया है और बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे तो बम्बई में बैठ के बहुत खुशी महसूस होती है कि वितस्ता रेडियो, वितस्ता नाम जो रखा है आपने, हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ वितस्ता, बहुत ही एक प्रेशियस और बहुत ही एक ऐसा नाम है जो हमारे खून में बहता है
0: जी।
1: तो वो नाम से आपने रेडियो का शुरुआत की और चल रहा है इतने अच्छे लेवल पे, सक्सेसफुल लेवल पे, मैं मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ आके जो यहाँ की वाइब्रेशन है, लिटरली मुझे लगा मैं किसी मंदिर में अंदर आ गई हूँ, और आपका वो जो ऑरा है इस स्टूडियो का, वाइब्रेशन जबरदस्त पावरफुल, और क्योंकि आप खुद प्योर हो, आप खुद सिंसियर हो, ऑनेस्ट हो, डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर आर्ट, आप खुद एक आर्टिस्ट हो, तो आपको पता है ये आर्ट क्या चीज है। आपका पैशन और आपका डेडिकेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो आशीर्वाद है, जो आपके शब्द है, इनको हम संजो के रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस सफर पर हम चले हैं आखिरी सांस तक इस सफर को जारी रखेंगे। और अम्बाला के जनता के लिए हम पिछले 36 वर्षों से जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहेगा। निर्जा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा और मैं यहाँ बैठ के आपसे कुछ बातें कर पाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।
0: थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुफ्तगू एपिसोड 5। आज के आमंत्रित मेहमान थे कश्मीरी फोक, सूफी, गजल एवं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर श्रीमती निर्जा पंडित जी। सहयोग दिया किरणी दास ने, रिकॉर्ड, एडिट, निर्देशन एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन, सेट कर दियो 90.0 ओन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है वहां लहर का संगीत, युगो युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की ये रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: ਮਨ ਖਾਤਰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸੌਂਗ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਕਰ ਲਿਓ ਓਨ ਸੈਟ ਕਰ ਦਿਓ 90.0 ਓਨ ਯੂਰ ਫੋਨ ਔਰ ਮਲੈ ਦਿਓ 7056413010 ਪਾ ਫੋਨ
1: योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hamsafar Zindagi Ka Ambala Kent's first community radio licensed by Ministry of Information and Broadcasting Government of India
3: Tochu Bozan FM 90.0 MHz Radio Vitasta Hum Safar Zindagi Hoon
4: Aap sun rahe hain Ambala Kent ka pehla community radio FM 90.0 MHz par Radio Vitasta Hum Safar Zindagi ka

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hamsafar Zindagi Ka.
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और रमेश जी आपको मेरी प्यार भरी नमस्ते।
1: जी बहुत बहुत नमस्ते और आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्योंकि आज पहले मैं पहुंचा हूं स्टूडियोज में।
0: जी बिल्कुल सही कहा, आज मैं थोड़ी लेट हो गई।
1: आप गए थे पानी पीने।
0: जी
1: है ना जी।
0: जी
1: इसलिए मैंने सोचा मैं ही पहुंच जाऊं और मैं आपका स्वागत करूं।
0: जी मेरा स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा लगा ना जी।
0: जी बहुत अच्छा लगा।
1: जी जी जी तो बताइए आज किस टॉपिक पे बात होगी।
0: जी आज हम बच्चों में किस तरह से आत्मविश्वास पैदा करें इसी बारे में आज हम बात करेंगे।
1: अंग्रेजी का एक शब्द है सेल्फ कॉन्फिडेंस।
0: जी बिल्कुल,
1: बहुत जरूरी है। बच्चे काफी ज्यादा शायनेस फील करते हैं, लेकिन आजकल वैसे बच्चे बड़े तेज हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा।
1: और क्योंकि नेट की वजह से काफी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, बच्चों में पढ़ने की जो आदत है वो भी बहुत अच्छी होती है। फिर भी बहुत जरूरी बनता है कि आत्मविश्वास या सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ, और अब मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्राम में एक गीत की जरूरत है।
1: बिल्कुल जी, प्रोग्राम के शुरू में जैसे आप जानते हैं हम तो गाने की बात जब करते हैं तो शुरुआत तो गीत से ही होती है।
0: जी।

0: जैसा अभी हम इस गाने से पहले बात कर रहे थे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है, बच्चों में होनी चाहिए, और इस पर आप चर्चा करेंगे।
1: जी बिल्कुल, देखिए किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है, इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा किया जाए ताकि वह जीवन में सफलताओं की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कुछ बातों पर गौर करने की।
0: बिल्कुल, अपने मन में डर को बाहर निकालना है
1: जी,
0: खौफ को बाहर निकालना है, ये करना है, इस तरह का जज्बा बच्चों में होना चाहिए।
1: जी देखिए, सबसे ज़रूरी है कि बच्चों की बातों को अनदेखा ना करें, उनको ध्यान से सुने और उनकी बातों में रुचि भी दिखाएं, और बच्चों के साथ संतुलित व्यवहार करें। कई बार कभी किसी काम के लिए काम को करने के लिए माँ बच्चे को रोकती है, पर दूसरी तरफ पिता उसी काम को करने में बच्चे का साथ देता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कि क्या सही है और क्या गलत।
0: बिल्कुल सोनू जी, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई माता बच्चे से कोई काम करवाना चाहती हैं और कहती हैं ये काम करिए, पिता का भी साथ मिलना चाहिए उसे, तभी जाके उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसमें बढ़ोतरी होगी।
1: जी बिल्कुल, देखिए जब दोनों तरफ से हाँ होगी तो उसे पता चलेगा कि ये काम सही है और ये मुझे करना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और जहाँ तक हो सके बच्चे को झूठ बोलकर बहलाने की कोशिश ना करें, उसे आप अपनी परेशानियों मजबूरियों से अवगत कराएं, इससे बच्चे में जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और ये भी उसमें विश्वास होगा कि आपने उन्हें अपनी प्रॉब्लम से अवगत करवाया है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स में शामिल किया
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल, देखिए एक तो हम कहते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कौन होता है, उनके माता पिता, उसके बाद स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो उनके गुरु बन जाते हैं, लेकिन माँ बाप का सबसे बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की बेहबूदी के लिए। आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर कोई घर में आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो बेटा बाहर आता है और पिताजी उसको कहते हैं कि बोलना वो यहाँ नहीं है, तो यानी झूठ जो है घर से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी आदतें हैं जो हम खुद या माता पिता बच्चों में डालते हैं, इनसे
1: हाँ।
0: बचना चाहिए, बचना चाहिए
1: ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो और हम ये ना कह सके कि हमारे बच्चे हमसे झूठ बोलते हैं।
0: पहले जमाने में क्या होता था, अब तो वैसे काफी हद तक सिगरेट लोग पीना छोड़ गए हैं, और लेकिन पहले जमाने में सिगरेट की डिब्बी जो लानी है, बच्चे को पैसे पकड़वाते थे और बाजार से सिगरेट की डिब्बी आप लाइए, ये आदत भी गलत है। और मैंने देखा है कि इस तरह की जब आदतें जब शुरुआत हो जाती थी तो फिर बच्चे में भी इसी तरह की आदत पड़ जाती थी।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए बच्चों को ज़्यादा टोका टाकी भी ना करें, उसके पास आप इतना साथ हो जाएं कि वह अपनी बातें भी झिझक आपसे शेयर कर सके।
0: बिल्कुल, आजकल तो एक ट्रेंड भी है कि बच्चों के साथ आप दोस्त बन के रहिए, है ना जी, अपने बेटे के साथ अपनी बेटी के साथ दोस्त बन के रहिए और उसके बाद हर बात उसे आप साझा करिए।
1: और बच्चा अगर आपका कोई गलती करता है तो आप उसे डांटे या मारे नहीं, बल्कि उसे विश्वास में लेकर प्यार से समझाने की कोशिश करें।
0: अरे तो हमने तो काफी डांट खाई है, हमने मार भी खाई है, लेकिन आजकल माता पिता में उस तरह की हिम्मत नहीं होती है कि बच्चे को मारे, आजकल बच्चे जो हैं बॉडी बिल्डर्स होते हैं।
1: जी देखिए, वो तभी बॉडी बिल्डर्स बनते हैं जब हम छोटे, जब वो होते हैं, अच्छे संस्कार उनको नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल, ये आपने सही बताया है कि बच्चे को कभी डांटिए नहीं और किसी के सामने ना डांटिए, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसके बाद बच्चा कोई भी जब किसी के सामने आप उसको डांटते हैं तो कोई भी स्टेप उठाने पे वो मजबूर हो जाता है, इसलिए बच्चे के साथ रहिए दोस्त बनकर।
1: और एक बात और कहना चाहेंगे, उन्हीं घरों के बच्चे कम आत्मविश्वासी बनते हैं जिनके पेरेंट्स में आपस में अनबन होती है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आपको भी अच्छा व्यवहार करना होगा एक दूसरे के साथ।
0: माता पिता को चाहिए कि बच्चे के सामने झगड़ा ना करें।
1: जी बिल्कुल,
0: और ये बहुत जरूरी है। बहरहाल काफी बातें हुई हैं, मुझे लगता है कि यहाँ हमें रुकना पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, रुकना पड़ेगा क्योंकि जरूरत है।
0: जरूरत है एक गाने।

0: जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना जी, बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी, जैसे शब्द का हमने इस्तेमाल किया कि बच्चे के साथ दोस्त बनकर रहिए, तभी जाके आपका बच्चा तरक्की कर सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है।
1: जी बिल्कुल सही,
0: ये बहुत जरूरी है। और
1: अब हम आगे चलेंगे और लहसुन की बात करेंगे। देखिए, लहसुन को कच्चा खाने से शरीर में के कई लाइलाज जो रोग हैं वो ठीक हो जाते हैं। हर रोज लहसुन की 2 या 3 कच्ची तुरियां खाली पेट खाने से खून में बड़ी चर्बी है जो वो पतली हो जाती है।
0: आमतौर पे जो जो जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए कहा गया है कि अगर इस तरह का आप इस्तेमाल करें तो आपके वो जो खून है उसमें पतलापन आएगा और आपकी नाड़ियों में वो खून ठीक ढंग से चलता रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही कहा। देखिए, इससे खून भी साफ होता है। दमा, खून में अगर आपके शुगर है, मानसिक तनाव है, सिर दर्द है, जोड़ों का दर्द, कमजोरी, बदहजमी जैसे कई रोग ठीक हो जाते हैं अगर हम डेली रूटीन में कच्ची तुरी खाते हैं 2 या 3।
0: जी, हालांकि मैंने सुना था कि सोनू जी की इसको भून के अगर खाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही खाई। लेकिन देखिए, भूनकर दाल या सब्जी में डालने
0: ये बात
1: से
0: मैंने
1: इसकी
0: सही खाई नहीं बल्कि सही कही। जी
1: देखिए, लहसुन को तड़के में आप भूनकर दाल और सब्जी में डालने से देखिए इसकी खुशबू और तीखापन तो खत्म हो जाता है। और आपने सही कहा कि जो दाल सब्जी है वो तो स्वाद बन जाती है, पर इसके जो औषधि गुण है वो खत्म हो जाते हैं।
0: और ये एक प्राचीन, इसको हम मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं। आजकल जो दवाइयाँ बनती हैं ना जी, उसमें लहसुन को इस्तेमाल में लाया जाता है। और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आपकी जो पाचन शक्ति है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है अगर आप लहसुन ले लें। इसलिए हर सब्जी में, यहाँ पे इस एरिया में, हर जगह लगभग लहसुन लेते हैं।
1: देखिए, बिना गर्म किए लहसुन का जैम बनाकर सेवन किया जा सकता है, जिससे कि लहसुन के जो औषधि गुण है वो बरकरार रहेंगे।
0: बिल्कुल, लहसुन का पेस्ट बना सकते हैं और उसके बाद उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
1: देखिए, आप जैम बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं हम बताएं?
0: जी बिल्कुल।
1: देखिए, 250 ग्राम आप लहसुन की तुरियों को अच्छी तरह बारीक पीसकर शीशे की खुली मुंह वाली शीशी में डालकर उसमें 250 ग्राम आप शहद डालें और आपका जो जैम है वो तैयार हो जाएगा। और लहसुन के जैम में आप 50 ग्राम अदरक भी बारीक करके डाल सकते हैं, टेस्ट दुगना हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने और ये आपको फायदा दे सकते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बताई हमें कि लहसुन के जो फायदे हैं बहुत जरूरी है, लेना चाहिए लेना चाहिए। हम आपको एक गाना सुनाते हैं।

0: मुझे बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में
1: बहुत जरूरी है कि आमतौर पर सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है लहसुन और ये इसकी तासीर गर्म रहती है तो इसलिए शरीर में गर्माहट भी रहती है और बहुत फायदे हैं जी और लेना चाहिए। बहरहाल आज आप हमें क्या खिलाएंगे?
2: जी आज हम खिलाएंगे गाजर का हलवा।
1: गाजर का हलवा आमतौर पर सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि सर्दियों में गाजर ज्यादा उपलब्ध रहती हैं और सस्ती रहती हैं
2: और ये बहुत पौष्टिक भी होते हैं।
1: हाँ जी,
2: देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो कुछ इस तरह से है। गाजर आप 1 किलो लीजिए, चीनी 250 ग्राम, खोया 250 ग्राम, दूध आप 1 कप लीजिए, देसी घी 1 टेबलस्पून, किशमिश 1 टेबलस्पून, काजू 10-15 ग्राम कटे हुए लीजिए, नारियल 1 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ या आप कटा हुआ भी ले सकते हैं, छोटी इलायची 5-6 पीसी हुई लीजिए। ये थी सामग्री। अब विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले गाजर का हलवा बनाने के लिए गाजरों को धोकर छील लें तथा इसे इन्हें कद्दूकस कर लें। खोया कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर भून लें। भुना हुआ खोया एक प्याले में डालकर रख लें। कद्दूकस की हुई गाजर कढ़ाई में डालकर गैस पर रखें और इसमें दूध डालकर मिला लें। गाजर को नर्म होने तक पकने दें और इसमें चीनी मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसे हिलाते रहें। गाजर अपना रस छोड़ने लगे हर 2 मिनट के बाद उसे आप हिलाते रहें ताकि वह नीचे ना लग जाए। रस सूखने तक उसे आप अच्छी तरह पका लें। पकी गाजर में घी डालकर उसे भून लें। अब किशमिश, काजू और खोया मिला लें और 2-3 मिनट के बाद गैस बंद कर हलवे में पिसी इलायची मिला दें। हलवे को प्याले में निकाल लें तथा इसे कद्दूकस किए हुए नारियल से सजाकर गरम गरम या ठंडा परोस सकते हैं।
1: अगली बार जब आप घर जाएंगे, घर से आएंगे तो ये जरूर बनाइएगा और हम खाना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल, जरूर खिलाएंगे,
1: एक साथ हम खाएंगे बिल्कुल। ये तो आजकल बड़ा आप बता रहे थे ये सारी बातें और हमारे मुंह में पानी आने लगा था।
2: जी, आपका स्वाद अगली बार चेंज हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाजर का हलवा मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि हमारे किसी लिसनर ने हमें बताया था, खत के लिए शुक्रिया प्रोग्राम में, कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं इस पर आप चर्चा जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: लेकिन जाते जाते खूबसूरत सा गाना।
1: बिल्कुल जी, गाना मैंने तैयार रखा है जी। गाना हम आपको सुनाते हैं और मुझे आप इजाजत दीजिए।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह, जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं, बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हम सफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई, और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था, और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था, और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं, और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसके शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाए।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ, अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की, विरासत जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है। और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहां तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहां खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओ, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव,

0: अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया। उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा। एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत। इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहाँ लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूँ विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: तो रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें, ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है, शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के सुरों की सौगात, जो हर बार छू जाते हैं दिल के जज्बात। इनके आवाजों में है एक अलग ही असर, जो बना देती है हर पल को हसीन और बेहतर। तो आइए सुनते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर जी के दिल छूने वाले नगमे हमारे FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: आपने ट्यून इन किया है एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह जो करता है प्रसारण अंबाला छावनी से। और आज का सफर थोड़ा अलग है। आज हम शहर से बाहर नहीं बल्कि अपने ही शहर की गलियों में, अपने ही अतीत में झांकने वाले हैं। मैं हूं आपका रेडियो हमसफर भरत सोपोरी। मेरा दिल की गहराइयों से सभी अंबाला वासियों को और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। इस सफर में आपके साथ रहूंगी।
0: अंबाला सिर्फ एक कैंट टाउन नहीं, सिर्फ एक जंक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी धरती है जिसने आजादी की पहली चिंगारी देखी, जिसने सैकड़ों साल पुराने तालाबों से शहर की प्यास बुझाई और जिसकी गलियों की खुशबू आज भी पूरे उत्तर भारत को बुलाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अंबाला की कहानी अंबाला के शब्दों में। बात करते हैं नाम और नींव, अंबाला कहां से आया। सबसे पहले बात उस सवाल की जो हर अंबाला वासी से कभी न कभी पूछा गया हो, अंबाला नाम आया कहां से। इतिहासकार बताते हैं कि इस शहर को 14वीं सदी में अम्बा राजपूत नाम के एक सरदार ने बसाया था और माना जाता है कि शहर का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक दूसरी मान्यता ये भी है कि ये नाम देवी भवानी अम्बा के नाम से जुड़ा है, जिनका एक प्राचीन मंदिर आज भी इस शहर में मौजूद है। और एक तीसरी दिलचस्प कहानी ये भी कही जाती है कि इस इलाके में कभी आमू के बाग हुआ करते थे।
1: अब ये पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कौन सी कहानी 100% सही है। इतिहास में अक्सर कई किंवदंतियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये धरती बहुत पुरानी है। यहाँ हुई खुदाइयों और मिले पाषाण उपकरणों से इतिहासकार यह मानते हैं कि ये क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के दौर में ही बसा हुआ था और महाभारत काल से भी इसका नाता जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, अंबाला की मिट्टी में सदियों की परतें दबी हैं और अब बात करते हैं उस अध्याय की जिस पर हर अंबालावासी को गर्व है।

0: 1857, वो सुबह जो मेरठ से पहले अंबाला में उगी। दोस्तों, स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम अंबाला से शुरू हुआ। इसकी शोध में जाने माने इतिहासकार डॉक्टर केसी यादव जैसे शोधकर्ता शामिल है। ये दावा करते हैं कि इस विद्रोह की असली शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, मेरठ से भी कुछ घंटे पहले। तारीख थी 10 मई 1857, दिन रविवार। कहा जाता है कि सुबह करीब 9 बजे अंबाला में तैनात 60वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने खुलेआम बगावत का बिगुल बजा दिया और उसके कुछ घंटों बाद दोपहर में 5वीं नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ खड़ी हुई। ये मेरठ की घटना से करीब 9 घंटे पहले की बात मानी जाती है। हालांकि अंग्रेज फौज सतर्क थी, इसलिए इस विद्रोह को उसी वक्त कुचल दिया गया। बाद में अप्रैल 1858 से मई 1858 के बीच अंबाला में 26 से ज्यादा सिपाहियों और सैनिकों को फांसी दी गई।
1: ये बताना जरूरी है कि 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ये विषय इतिहासकारों के बीच आज भी चर्चा और शोध का विषय है। और हरियाणा सरकार व कई स्थानीय इतिहासकार अंबाला के इस दावे को मजबूती से आगे रखते हैं। इसी को यादगार बनाने के लिए अंबाला छावनी में जीटी रोड के पास रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। 22 एकड़ में फैला यह स्मारक, जिसमें 1.63 मीटर ऊंचा कमल के आकार का टावर है और इसके संग्रहालय में 22 गैलरियों के जरिए 1857 की पूरी कहानी अंबाला में विद्रोह की शुरुआत से लेकर हरियाणा भर में इसके फैलाव और देश भर के शहीदों तक दिखाई जाएगी।
0: तो दोस्तों, जब भी आप उस शहीद स्मारक के पास से गुजरें, याद रखिएगा, ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं बल्कि उन गुमनाम सिपाहियों की कुर्बानी की गवाही है, जिन्हें इतिहास ने अब तक वो जगह नहीं दी जो मिलनी चाहिए थी।
2: 57 की चिंगारी से आज की उड़ान अंबाला तो लिखता रहे।
0: अब बात करते हैं अंबाला छावनी जंक्शन की, पटरियों पर बसा इतिहास। अब बात करते हैं अंबाला की उस पहचान की, जिससे होकर हर दिन हजारों यात्री गुजरते हैं, अंबाला छावनी रेलवे जंक्शन। इस स्टेशन का इतिहास 1891 से जुड़ा है, जब ये अस्तित्व में आया, और तभी से ये उत्तर भारत के सबसे व्यस्त और सबसे पुराने जंक्शनों में गिना जाता रहा है। आज ये हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और दिल्ली कालका लाइन, मुरादाबाद अंबाला लाइन, अंबाला अटारी लाइन जैसे कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का संगम बिंदु है। 7 प्लेटफॉर्म और 10 पटरियों वाला ये जंक्शन देश के व्यस्ततम स्टेशनों में शुमार किया जाता है।
1: यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी समझती हूँ। अंबाला के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि यह भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, लेकिन तथ्यों की बात करें तो भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से शुरू हुआ था। अंबाला छावनी जंक्शन जरूर उत्तर भारत के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक है और 19वीं सदी के अंत से ही ये इस क्षेत्र का प्रमुख यातायात केंद्र रहा है। लेकिन जब हम इतिहास बता रहे हों तो सही तथ्य बताना ही हमारा फर्ज है, इसलिए हम कहेंगे अंबाला जंक्शन भारत के सबसे पुराने और सबसे व्यस्त रेलवे केंद्रों में से एक है, ना कि सबसे पुराना।

0: अब हम बात करते हैं मंदिर, तालाब और मील के पत्थर की विरासत, जो आज भी जीवित है। अंबाला की विरासत सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि आज भी शहर की गलियों में सांस लेती है। चलिए इनमें से कुछ जगहों की आप सभी को सैर कराते हैं। सबसे पहले रानी का तालाब। अंबाला छावनी में स्थित यह लगभग 400 साल पुराना तालाब कहा जाता है, जिसको महाराजा रंजीत सिंह के दौर में बनवाया गया था। कहा जाता है कि उस दौर में दो तालाब खुदवाए गए थे, राजा का तालाब और रानी का तालाब। समय के साथ साथ राजा का तालाब अब पटेल पार्क में बदल चुका है, लेकिन रानी का तालाब आज भी अपने मूल रूप में मौजूद है, जिसके पास शिव मंदिर और देवी मंदिर है और जिसकी देखभाल आज भारतीय सेना करती है। पास ही ठाकुर द्वारा मंदिर भी है, जो सिख गुरु गुरबख्श सिंह की स्मृति में बनवाया गया बताया जाता है, और भगवान वामन का एक मंदिर भी है, जहां दशहरे पर सालाना मेला लगता है। इसके अलावा शहर में भवानी अम्बा माता का मंदिर और अंबिका देवी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर भी है, जो शहर की धार्मिक विरासत की कहानी कहते हैं।
1: अब बात कोस मीनार की। ये मुगल कालीन मील के पत्थर जैसी मीनारें जीटी रोड के किनारे किनारे यात्रियों को दूरी बताने के लिए बनवाई गई थी, और ये परंपरा शेर शाह सूरी के दौर से जुड़ी मानी जाती है। अंबाला में मौजूद यह कोस मीनार आज भी प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित स्मारक है। हालांकि वक्त की मार और आसपास के बाजार के दबाव के चलते इसे बेहतर देखभाल की सख्त जरूरत है।

0: जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं अंबाला के इतिहास के कुछ पन्ने। आइए आप बात करते हैं अंबाला की थाली की, यानी स्वाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। दोस्तों अब बात दिल की, यानी अंबाला के खाने की, क्योंकि किसी भी शहर का इतिहास उसकी थाली में भी बसता है। अंबाला हरियाणा और पंजाब की सरहद पर बसा है, इसलिए यहाँ के खाने में दोनों परंपराओं का खूबसूरत मेल मिलता है। देसी घी, मक्खन और दूध से बनी चीजों की भरमार, यहाँ की मशहूर बाजरे की रोटी और आलू की सब्जी, स्वादिष्ट मिक्स दाल जिसमें अरहर, मूंग, मसूर और चने की दाल का मेल होता है, और बेसन मसाला रोटी जैसे व्यंजन आज भी घर घर में बनते हैं। और अंबाला छावनी के खाने की बात हो और पूरन सिंह का ढाबा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं। कहा जाता है कि सरदार पूरन सिंह विभाजन के बाद पाकिस्तान से आकर अंबाला में बस गए और रेलवे स्टेशन के पास एक छोटे से टेंट में अपना ढाबा शुरू किया, जहां पर नॉन वेजिटेरियन डिश इतनी मशहूर हुई कि यहाँ तक कहा जाता है कि आशा भोसले जैसी हस्तियां भी यहाँ खाना खाने आई। आज उनके नाम पर अंबाला में कई सारे ढाबे चल रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता का ही सबूत है, भले ही असली पूरन सिंह के ढाबे को लेकर आज भी लोगों में बहस होती रहती है।
1: जीटी रोड किनारे बसे यह ढाबे सदियों पुरानी उस परंपरा का हिस्सा है, जब यह रास्ता व्यापारियों और यात्रियों का मुख्य मार्ग हुआ करता था। और आज भी अंबाला की गलियां गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन की खुशबू से गुलजार रहती।

0: श्रोताओं, आज के इस अंतिम बाइट में हम बात करेंगे साइंस सिटी की। कम लोग जानते हैं ये तथ्य, और अब वो तथ्य जो शायद अंबाला के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। अंबाला को साइंस सिटी ऑफ इंडिया यानी भारत का विज्ञान शहर भी कहा जाता है। जी हाँ, ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन अंबाला छावनी में सन 1914 से वैज्ञानिक और सर्जिकल उपकरण बनाने का काम चल रहा है। आज यहाँ 2000 से ज्यादा छोटी बड़ी इकाइयां, माइक्रोस्कोप, ग्लासवेयर, प्रयोगशाला उपकरण और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाती है, जो न सिर्फ भारत के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में बल्कि DRDO जैसे संस्थान और दुनिया भर के देशों में भी भेजे जाते हैं। ये उद्योग हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कारोबार करता है और 20,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलता है। और हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें और सभी अंबाला वासियों को इस बात पे गर्व है कि जो गत वर्ष में भारत देश का चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ, उसमें भी अंबाला की साइंस सिटी की ओर से कुछ पुर्जे बना के भेजे गए थे।
1: तो दोस्तों, अंबाला सिर्फ छावनी और जंक्शन नहीं, ये विज्ञान और उद्योग का भी एक खामोश लेकिन ताकतवर केंद्र है।
0: तो दोस्तों, ये थी अंबाला के इतिहास की एक झलक। 1857 के विद्रोह की गूंज से लेकर रानी के तालाब की लहरों तक, कोस मीनार के खंडरों से लेकर पूरन सिंह के ढाबे की खुशबू तक और साइंस सिटी की पहचान तक, ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि सदियों की एक जीती जागती कहानी है। आप हमें अपने सुझाव, अपनी यादें और अंबाला से जुड़े किसे भी भेज सकते हैं, जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इतिहास सिर्फ किताबों का नहीं, आप सबका भी है। और ये जानकारी हमने जो हासिल की, अगर इसमें कोई त्रुटि है, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। आइए कुछ पंक्तियों से इस इतिहास की जानकारी का हम समापन करते हैं। पंक्तियां यूं है, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, महाभारत की माटी का जहां गूंजता है गौरव, अंबा देवी के आंचल में महका इतिहास मनोहर, प्रथम क्रांति की ज्वाला बनकर जो भारत पर छाया, उस अंबाला की धरती ने स्वाभिमान सिखाया, उधर दूर कश्मीर घाटी से बहती निर्मल धारा, वितस्ता का रूप मनोहर, पावन बहता खारा, एक तरफ वीरित्व की माटी, दूजी और भागीरथ प्रीत, अंबाला और वितस्ता गाए भारत के गीत, इतिहास का शौर्य यहाँ है, वहां लहर का संगीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत, युगों युगों से चली आ रही संस्कृति की यह रीत। मैं भारत सोपोरी आपसे लेता हूं विदा, लेकिन याद रखिएगा, रेडियो वितस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर हमेशा है आपका हम सफर जिंदगी का। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और मुझे भी दीजिए इजाजत, आशा है आगे भी आप सभी श्रोताओं को अवगत कराते रहेंगे अंबाला के इतिहास के साथ। खुश रहिए और अपने क्षेत्र के बारे में जानते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: दोइचो बोजान 90.0 रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी हंद।
1: अजय सुना सरदारा की हाल है।

0: आपने ट्यून इन किया है सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज हम आपके साथ एक संवेदनशील विषय पर बात करना चाहेंगे जो हम सबके लिए ही बहुत ही जरूरी है। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हरियाणा के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, गाँव वासियों के लिए, सरपंचों के लिए, सभी हरियाणा वासियों के लिए। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अपने आसपास के वातावरण को बचा के रखिए।
1: एक छोटी सी जिम्मेदारी सबको बचा।
0: हरियाणा में खुले पड़े बोरवेल एक गंभीर और जानलेवा समस्या बन चुकी है। आए दिन मासूम बच्चे खेलते खेलते इन गहरे गड्ढों में गिर जाते हैं, जिससे न केवल उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है बल्कि पूरे प्रशासनिक अमले की सांसें अटक जाती है। खेतों में बोरवेल को खुला छोड़ना एक प्रशासनिक लापरवाही ही नहीं है बल्कि एक गंभीर अपराध है। सुरक्षा सर्वोपरि। हरियाणा में खुले बोरवेल का खतरा और कानूनी परिणाम। खेतों में सिंचाई के लिए बोरवेल खोदना किसानों की जरूरत है, लेकिन काम पूरा होने के बाद या बोरवेल के असफल होने पर उसे खुला छोड़ देना साक्षात मौत को दावत देने जैसा है। हरियाणा के विभिन्न जिलों से ऐसे कई दर्दनाक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां मासूमों को इन अंधेरे कुओं से निकालने के लिए सेना और NDRF को घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। बोरवेल को बंद रखना क्यों जरूरी है, कुछ बिंदु आपके सामने रखता हूं। पहला, मासूमों की सुरक्षा। खुले बोरवेल सबसे बड़ा खतरा बच्चों और मवेशियों यानी पशुओं के लिए होते हैं। खेल कूद के दौरान या घास चरते समय इनमें गिरने का जोखिम हमेशा बना रहता है। दूसरा, मानवीय और आर्थिक नुकसान। एक हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लाखों रुपए और प्रशासनिक ऊर्जा खर्च होती है। सबसे बढ़कर कई बार घंटों की मशक्कत के बाद भी बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है, जो कि एक कभी ना भरने वाला घाव है। तीसरा, सतर्कता ही बचाव है। बोरवेल का काम खत्म होते ही उससे लोहे के मजबूत ढक्कन यानी कैप से ढकना, चारों तरफ कंक्रीट से पक्का करना और कटीली तारों की फेंसिंग करना बेहद जरूरी है। कानूनी प्रावधान और सख्त दंड। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन ने खुले बोरवेल छोड़ने वालों के खिलाफ कड़े रुख अपनाए हैं। अगर कोई अपने खेत या प्लॉट में बोरवेल खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ निम्नलिखित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय न्याय संहिता BNS की धाराएं, जो पहले IPS के नाम से हम जानते थे। पहला, लापरवाही से जान जोखिम में डालना। खुले बोरवेल के कारण किसी की जान को खतरा पैदा करने पर लापरवाही का मामला दर्ज होता है। दूसरा, गैर इरादतन हत्या का मामला। यदि खुले बोरवेल में गिरने से किसी बच्चे या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जमीन के मालिक और बोरवेल खोदने वाली एजेंसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या यानी कल्पेबल होमिसाइड के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसमें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बोरवेल खोदने से कम 15 दिन पहले जिला प्रशासन यानी DC या सरपंच को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। नियम तोड़ने पर बोरवेल को तुरंत सील कर दिया जाता है। जमीन मालिक पर भारी प्रशासनिक जुर्माना लगाया जाता है। हादसे की स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन यानी बचाव कार्य का पूरा खर्च भी दोषी जमीन मालिक से वसूला जा सकता है। अब हम बात करते हैं हमारे कर्तव्य की। एक छोटी सी लापरवाही एक जिंदगी का अंत कर सकती है। यदि आपके आसपास या खेत में कोई ऐसा बोरवेल है जो इस्तेमाल में नहीं है तो उसे तुरंत मिट्टी, मलबे या कंक्रीट से ऊपर तक भर दें। अगर कोई मकान या जमीन मालिक कहने पर भी बोरवेल बंद नहीं करता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने गांव के सरपंच, स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन को दें। सजग रहें और किसी मासूम की जान बचाने में अपना योगदान दे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस

0: वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विविधता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कॉरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें। ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है। शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7 से

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: ईश्वर अल्लाह तेरे नाम।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: ताज महल। एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जिंदगी के अनजाने सफर से बेहद प्यार करने वाले हिंदी सिनेमा जगत के महान असाधारण और मधुर आवाज वाले कलाकार पर आधारित है आज का प्रोग्राम सुनहरे पल। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनका जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। किशोर कुमार का रुझान बचपन से ही संगीत की ओर था। महान अभिनेता एवं गायक केएल सहगल के गानों से प्रभावित किशोर कुमार की तरह ही गायक बनना चाहते थे। सहगल से मिलने की चाह लिए किशोर कुमार 18 वर्ष की उम्र में मुंबई पहुंचे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो पाई। किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार बतौर अभिनेता अपनी पहचान बना चुके थे और वो चाहते थे किशोर कुमार भी अभिनेता बने, मगर किशोर कुमार को अदाकारी के बजाय प्लेबैक गायक बनने की चाह थी।

0: बतौर गायक उन्होंने वर्ष 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में सहगल की अंदाज में गाने का मौका मिला। फिल्म लड़की बतौर अभिनेता उनके कैरियर की पहली हिट फिल्म थी। उन्होंने कई फिल्मों दूर गगन की छाओ में, दूर का राही, चलती का नाम जिंदगी जैसे फिल्मों का निर्देशन भी किया।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, हिर लो पान चबाए, आहा।

0: वाला ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला।
1: किशोर कुमार को ईश्वर ने बहु प्रतिभा से नवाजा था। वह एक अच्छे सिंगर तो थे ही, साथ ही अभिनय में भी पीछे नहीं थे। इसके अलावा सबसे दिलचस्प बात थी कि वो महिला गायक की आवाज में भी गा सकते थे। साल 1962 की फिल्म हाफ टिकट का गीत आके सीधी लगी दिल पे जैसी को किशोर कुमार ने मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया। और इसमें सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस गाने को एक बार में ही रिकॉर्ड कर लिया गया और ये गाना सुपरहिट साबित हुआ।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे करिया ओ सवरिया।

0: एकदर आर हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: चारूंगी शोर, बचाओ ओ मुर्गे ओ मुर्गे ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: या ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: किशोर कुमार ने कई हिट फिल्में देकर अपने अभिनय की अलग छाप छोड़ी। 1957 में आशा, 1958 में चलती का नाम गाड़ी, 1968 में पड़ोसन जैसे फिल्में दे दी। किशोर कुमार को 8 बार बतौर गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1969 में बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था।

किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लोगों के सामने जाते थे तब वह अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के कॉलेज में पढ़ते थे तब वह अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उससे अपने 5 रुपए और 12 आना मांगे तो वह कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वालों की बात ही न सुनते थे, लेकिन बाद में ये गाना 5 रुपए और 12 आना काफी हिट हुआ था।

तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा।

0: बताया जाता है कि किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर लिखा था बिवियर ऑफ किशोर। इससे जुड़ा एक किस्सा भी चर्चित है कि जब निर्माता निर्देशक HS रवेल उनके घर में उनसे मिलकर बाहर निकल रहे थे तभी किशोर कुमार ने उसके हाथ पर काट लिया।
1: हम थे, वो थी, हम थे।

धक धड़के दोनों ने देखा मुड़ मुड़ के वाह वाह वाह हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार

0: खेचा आ हा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया।
1: बताया जाता है कि किशोर कुमार बहुत ही मूडी किस्म के इंसान थे। जब उनका मन होता वो एक बार में गाना रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन मन न होने पर कितने भी पैसे दिए जाए वो नहीं गाया करते थे। एक दिलचस्प किस्सा बताया जाता है कि उन्होंने एक बार दोस्त से कहा कि देख जब हम मरने वाले होंगे तब सारा पैसा अपनी छाती पर बांध लेंगे तब मरेंगे।

0: किशोर कुमार की कल्पना की उड़ान भी बेहद अलग थी। अपने घर को लेकर उनका एक अलग सपना था, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर पर एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी ही पानी हो। वह ये भी चाहते थे कि उनके पलंग के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सके। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया।
1: रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक जाना, जरा रुक जाना।

किशोर कुमार ने कई अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन कुछ मौकों पर मोहम्मद रफी ने उनके लिए गीत गाए। इन गीतों में हमें चले हो कहां करके जी बेकरार, बागम बाग, मन बावरा, निस दिन जाए, रागनी है दास्तान तेरी ये जिंदगी, शरारत और आदत है, सबको सलाम करना और प्यार दीवाना शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद रफी किशोर कुमार के लिए गीत गाने के वास्ते महज 1 रुपया पारिश्रमिक लिया करते थे।

किशोर कुमार को अपने करियर में वो दौर भी देखना पड़ा जब उन्हें फिल्मों में काम ही नहीं मिलता था। तब वे स्टेज पर कार्यक्रम पेश करके अपना जीवन यापन करने को मजबूर थे। मुंबई में आयोजित एक ऐसे ही स्टेज कार्यक्रम के दौरान संगीतकार ओपी नायर ने जब उनका गाना सुना तो उनसे प्रभावित होकर कहा, महान प्रतिभाएं तो अक्सर जन्म लेती रहती है, लेकिन किशोर कुमार जैसा पार्श्व गायक हजार वर्ष में केवल एक ही बार जन्म लेता है। उनके इस कथन का उनके साथ बैठी पार्श्व गायिका आशा भोसले ने भी समर्थन किया।

वर्ष 1987 में किशोर कुमार ने निर्णय लिया कि वो फिल्मों से संन्यास लेने के बाद वापस अपने गांव खंडवा लौट जाएंगे। वह अक्सर कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। उन्हें 13 अक्टूबर 1987 को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। किशोर कुमार ने राजेश खन्ना जी के लिए बहुत गाने गाए। इनकी मृत्यु पर राजेश खन्ना ने कहा था कि मेरी आवाज चली गई।

किशोर कुमार जैसे सदाबहार कलाकार कभी विदाई नहीं लेते, कभी अलविदा नहीं कहते। वे अपने निस्वार्थ योगदान के कारण हमारे दिलों में जीवित हैं। वे चिरस्थायी और कालजयी है और उनके गीत थके हुए श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना कभी नहीं छोड़ते।

0: है।
1: इसके साथ ही इस कार्यक्रम का ये अंक समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ और अगले अंक में किसी और हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का कार्यक्रम पार्श्व गायक किशोर कुमार पर आधारित था। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट व निर्देशन भारत सोफोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता एफएम 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

0: रुकती नहीं, धड़कता है दिल तो थकता नहीं, बस इतनी सी देखभाल मांगता है, वरना ये किसी को कुछ कहता नहीं। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। विदस्ता की तरह जिंदगी भी बहती रहती है और उस बहाव को चलाने वाली धारा है हमारा दिल। आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz पर, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। और विश्व हृदय दिवस पर आज हमारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके दिल के नाम। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोली और इस कार्यक्रम में आज मेरा साथ देंगे।
1: मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अनु। नदी में पानी साफ और बहाव खुला रहे तो किनारे हरे भरे रहते हैं, ठीक वैसे ही दिल में खून का भाव सही रहे तो पूरा शरीर खिला रहता है। हमारा दिल दिन भर में लगभग 1,00,000 बार धड़कता है बिना किसी छुट्टी के।
0: जी हां श्रोताओं, आज हम बात करेंगे दिल की और कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी जानकारी देंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है और साथ में रेडियो विदस्ता की जिम्मेदारी भी। हम चाहते हैं कि अम्बाला के सभी श्रोताओं का और जितने भी हमारे श्रोता है वो स्वस्थ रहे, खास करके अपने दिल की देखरेख करें और उसका ख्याल रखें। कुछ बिंदु हम आपके सामने रखेंगे, जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा दिल भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी उम्र भी बढ़ जाती है, तो बहुत सारे बिंदु हम आपके लिए लाए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के साथ। हमारी उम्र के बढ़ने के साथ साथ दिल की उम्र भी बढ़ती है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में ऐसे बदलता है दिल। 20 से 25 की उम्र में दिल सर्वाधिक युवा होता है। इसके बाद हर 10 साल के प्रभाव दिल पर साफ दिखने लगते हैं। दिल सिर्फ धड़कता नहीं, उम्र के साथ बदलता भी है। 25 की उम्र के बाद दिल और उसकी सेहत में होने वाले बदलावों को समझिए। जानिए उन खोजों को जिन्होंने हृदय रोगों के इलाज में बड़े बदलाव किए हैं। ये सारी जानकारी जो हम आप तक ला रहे हैं, इसको तैयार किया है डॉक्टर अश्विन मेहता ने, जो डायरेक्टर हार्ट फेलियर प्रोग्राम सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में है। 30 से 40 की उम्र 5 से 10% तक कम हो सकती है ब्लड पंप करने की क्षमता। अधिकतम हार्ट रेट और व्यायाम के दौरान दिल की पंपिंग क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। दिल की ब्लड पंप करने की अधिकतम क्षमता 5 से 10% कम हो सकती है। ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर और कमर एवं हिप्स के अनुपात की जानकारी जरूर रखें। परिवार में दिल से संबंधित समस्या रही है तो जरूर पता करें।
1: 40 से 50 साल दिल की मांसपेशियों और आर्टरीज में बढ़ने लगती है शक्ति। दिल की मांसपेशियां कुछ मोटी व कम लचीली हो सकती हैं। बड़ी धमनियों की लोच घटने लगती है। रक्त को आगे ले जाने के लिए दिल को अधिक मेहनत करनी पड़ती है। ध्यान रखें, इस उम्र में वजन पर नजर रखनी चाहिए क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। खराटों को नजरअंदाज ना करें, इनका इलाज कराएं।
0: 50 से 60 साल दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने की कोरोनरी आर्टरीज की क्षमता घटने लगती है। दिल की धमनियों की अंदरूनी परत की वो क्षमता जिसके जरिए वो जरूरत के अनुसार रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है घटने लगती है। ध्यान रखें, सप्ताह में 2 दिन स्क्वैट्स, वेट ट्रेनिंग या अन्य ऐसी ही एक्सरसाइज करें, ये मांसपेशियों का लचीलापन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है।
1: 60 से 70 साल दिल की रिजर्व क्षमता कम हो जाती है, शरीर की मांग पर शक्ति नहीं बढ़ा पाता। जरूरत पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ा लेने की दिल की ताकत कम होने लगती है। तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, लंबे समय तक व्यायाम करने पर जल्द थकान महसूस हो सकती है। ध्यान रखें, लेटने पर सांस फूले या पैरों टखनों में नई सूजन दिखे तो दिल की जांच कराएं। दिल की धमनियों का कैल्शियम स्कोर जरूर चेक करवाएं।
0: हमारे जीवन के 250 मिनट क्यों जरूरी है? 2024 के एक शोध के अनुसार यदि सप्ताह में 250 मिनट यानी करीब 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी की जाए तो दिल को सर्वाधिक फायदा होता है। ये शोध ब्रिटेन में 76,074 लोगों पर किया गया था। तो याद रखें, सप्ताह में 4 घंटे मध्यम से तेज गति की शारीरिक एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए।

0: आइए आपको बताते हैं दिल को सेहतमंद रखने का फार्मूला। ये पांच बातें बहुत काम की है। रोज कुछ मिनट तेज चलिए या दौड़िए। रोजाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक दिल की बीमारियों का खतरा कम कर सकती है।
1: अपने दिन भर के भोजन में आधी मात्रा कई तरह की सब्जियों और फलों की रखें। इससे आपका दिल मजबूत बनता है।
0: व्यायाम की आदत बनाएं। सप्ताह में 1 घंटे वेटलिफ्टिंग हार्ट स्ट्रोक का खतरा 40-50% तक कम कर सकती है।
1: ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच कराएं। इससे समय पर दिल से जुड़े जोखिमों का पता चलता रहेगा।
0: और आखिरी, हर स्थिति में पर्याप्त नींद लें। रोजाना 7-9 घंटे की नींद आपके दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहद

0: आपको बताते हैं हेल्दी हार्ट के कुछ टिप्स। दिल की सेहत के 3 संकेत और 1 जरूरी बचाव। नंबर 1, मसूड़ों की बीमारी से धमनियों में प्लाक जमने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक तक का खतरा बढ़ जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की शोध के अनुसार।
1: दूसरा, हाथों की मजबूत पकड़ भी दिल की सेहत का जबरदस्त संकेत हो सकता है। लैसेट के अनुसार यह दिल की सेहत का बीपी से सटीक प्रमाण है।
0: तीसरा, सामाजिक अलगाव और अकेलापन से हार्ट अटैक, स्ट्रोक या मौत का खतरा 30% तक बढ़ जाता है, हार्वर्ड हेल्थ द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार।
1: चौथा, फ्लू वैक्सीन लगवाने से हार्ट अटैक का खतरा 28%, मिनी स्ट्रोक का 47% और कार्डियक अरेस्ट का खतरा 85% तक कम होता है, वेब एमडी और हार्वर्ड की रिसर्च के अनुसार।

0: जब दिल कहे कि कुछ ठीक नहीं तो उसकी आवाज को टालिए नहीं। अगर सीने में दर्द या भारीपन, सांस फूलना, दर्द का कंधे या जबड़े तक जाना महसूस हो तो एक पल भी मत गंवाइए। फौरन 108 एम्बुलेंस या 112 पर कॉल कीजिए और अस्पताल पहुंचिए। सही वक्त पर पहुंचना ही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है।
1: दिल सलामत तो हर सफर आसान, दिल की हिफाजत ही असली पहचान। तो दोस्तों, आज अपने दिल से एक वादा कीजिए और अपनों से भी करवाइए। ये संदेश अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों तक जरूर पहुंचाइए।
0: जी हां श्रोताओं, इस साल के विश्व हृदय दिवस पर ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये केवल एक ही दिन के लिए नहीं है, ये पूरी जिंदगी के लिए है, ताकि हम अपने सेहत को अच्छा रखें, सुचारू रूप से अपनी जिंदगी को जिए और अपने दिल का ख्याल रखें, क्योंकि दिल हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो जीवन भर बिना रुके रक्त पंप करता रहता है। दिल है तो सारी दुनिया है। इन्हीं शब्दों और इन्हीं भावनाओं के साथ अब हम आपसे लेते हैं आज्ञा। आप सुनते रहिए रेडियो विदस्ता FM 90.0 MHz। बहते रहिए, धड़कते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: और अब मुझे भी दीजिए आज्ञा, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

ही अब तन्हा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब, चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं, ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने गमों का और मेरी

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें ही शादाब, सन्नाटा पसरा है।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

जी हाँ श्रोताओ, आप सुन रहे थे FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं, अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं, और आप सभी श्रोताओं का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे साथ पूरे दिन रहते हैं, आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय रखते हैं और हमें फीडबैक भेजते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर पर। हम आप सभी श्रोताओं से ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी राय, अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएंगे हमारे नंबर पर, जो हम इस सभा के अंत में आपको नोट कराते हैं, आज भी नोट कराएंगे। आपसे किसी खास विषय पर बात करते हैं, कुछ पंक्तियां सुनाते हैं, और उसके बाद कल के कार्यक्रमों का विवरण देते हैं, और साथ में आपको हमारे स्टूडियो का नंबर भी बता देते हैं। आप सभी श्रोताओं को जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से अंबाला की जनता को कुछ मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आप अपने बारे में भी हमें उसी नंबर पर लिख सकते हैं, ताकि हम आपको आमंत्रण देके आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर सभी श्रोताओं तक पहुंचा सकते हैं। सभी अंबाला के व्यवसायी जो है, उनसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना विज्ञापन इस सामुदायिक रेडियो से दे सकते हैं और अपनी आवाज को सभी अंबाला वासियों तक पहुंचा सकते हैं, सरल और सही शब्दों में। हम आशा करते हैं कि आप उसके बारे में भी जो भी जानकारी है वो आप हमें उसी नंबर से आप पूछ सकते हैं, और उस नंबर को हम आपको एक बार बताएंगे जब हम आज के विषय पर बात करेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मराठा। स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 52 सेकेंड। शाम की रोशनी धीमी हो रही है और हमारी आज की यह गुफ्तगु भी अब समापन के करीब है। उम्मीद है इन लम्हों की मिठास देर तक आपके साथ रहेगी और आपका दिन थोड़ा और खुशनुमा बना गई होगी। दोस्तों, आज बात करते हैं एक बेहद ही भावुक और सार्थक विषय पर, और आज का विषय है मां का त्याग और समर्पण शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। एक मां अपने बच्चे के लिए जो कुछ करती है वो किसी भी हिसाब किताब से परे है। रातों की नींद त्यागना, अपनी खुशियों को पीछे रखना और बिना थके हर पल अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचना, ये सब एक मां के लिए इतना स्वाभाविक होता है कि वो इसे कभी एहसास के रूप में या एहसान के रूप में नहीं गिनती। मां का प्यार निस्वार्थ होता है, बिना किसी अपेक्षा के और बिना किसी बदले की चाह के। आज के व्यस्त जीवन में हम अक्सर अपनी मां के इन निस्वार्थ त्याग को हल्के में ले लेते हैं, उनकी छोटी छोटी जरूरतों और भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि एक मां का आशीर्वाद और उसकी दुआएं ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। उनके साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना और उनके प्रति अपना प्यार और सम्मान जाहिर करना, यह हमारा सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, आइए हम सब अपनी मां के इस अनमोल त्याग और प्यार को पहचाने, उनको सम्मान दे, उनका सम्मान करें और उन्हें यह प्यार लौटाएं जो उन्होंने बिना शर्त हमें दिया था और दिया है, क्योंकि मां का साया ही जीवन की सबसे बड़ी छांव है। अगर आप ये सुन रहे हैं और अगर आप घर जा रहे हैं, आप घर पहुंच गए हैं, तो अपनी मां को गले लगाइए और मां को बताइए कि मां, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आपने मुझे जन्म दिया और आपने मुझे इस लायक बनाया। जी हां दोस्तों, थोड़ा सा भावुक है ये पल मेरे लिए भी और उम्मीद करता हूं आपके लिए भी होगा, और आपको इस आज के विषय से कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी। आप सभी के लिए 4 पंक्तियां लाता हूं हर दिन, आज भी आप सभी के नाम ये पंक्तियां हैं। मां के आंचल में बसती है दुनिया की सारी ममता, मां के आंचल में बसती है दुनिया की सारी ममता, बिना कहे समझ जाती है हर दर्द हर शिकायत। वितस्ता भी तो मां की तरह सबको सींचती है,
वितस्ता भी तो माँ की तरह सबको सींचती है, यही सिखाती है माँ का प्यार है सबसे बड़ी अमानत, यही सिखाती है माँ का प्यार है सबसे बड़ी अमानत। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की पंक्तियां, और चलते चलते आपको कल के कार्यक्रमों का विवरण देता हूं। कल 14 अक्टूबर 2026 बुधवार को जो कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं वो इस प्रकार है। सभा की शुरुआत होगी सुबह 5:58 पर, वंदे मातरम से हम करेंगे शुरुआत और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार, और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करेंगे पंचांग के साथ। 6 बजे सुनेंगे आप भक्ति संगीत, और 7:05 पर होगा कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7, पेश करेंगे आरजे किरनी। 8:30 बजे सकारात्मक कहानियों का समय होता है, पॉजिटिव स्टोरीज का समय होता है। कल आप सुनेंगे एपिसोड 12 दो पहिए, पेश करेंगे नरेश शर्मा। 9:30 बजे आप सुनेंगे मिले जुले गीत, शीर्षक होगा इंतजार का मौसम, पेश करेंगे रमेश मराठा। 10 बजे होगा कार्यक्रम बच्चों की बात, हम आपको एक स्कूल में ले चलेंगे सरस्वती विद्या निकेतन चंदपुरा, और इस पेश करेंगे इस कार्यक्रम को आरजे सेजल। संगीत की सभा जारी रहेगी। 2 बजे आप पुनः प्रसारण सुनते हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम का, जो हमने 9 अक्टूबर 2026 को प्रसारित किया था, उसका पुनः प्रसारण कल 2 बजे आप सुनिएगा। और 6 बजे भक्ति संगीत, 6:30 बजे शाम में गजल, और 7 बजे आप सुनेंगे बॉलीवुड की सुनहरी यादें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऊपर। यह हमारी आर्काइव से है, इसकी आवाज थोड़ी सी कमजोर हो सकती है क्योंकि ये आर्काइव से हम आपको सुना रहे हैं। 8:30 बजे हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है मेरे खुशबू के एहसास। आशा करते हैं कि कल के कार्यक्रम आपको पसंद आएंगे, और आप अपना फीडबैक हमें भेजेंगे, अपनी जानकारी हमें भेजेंगे हमारे स्टूडियो के नंबर पर जो है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। ये सारी जानकारी आपको जो मैंने पहुंचाई, इसको तैयार किया टीम रेडियो वितस्ता के कैजुअल अनाउंसर अन्नो ने। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत आपके मन में अपनी माँ के प्रति एक नया स्नेह और कृतज्ञता जगा गई होगी। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत, लेता हूं आपसे विदा, और एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 5:58 पर, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।